सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के अषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 34 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आप सबों का दिन मंगलमय हो।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने गए। अब से ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति

0: महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है भ्रष्टाचार से बचे।
3: रामकृष्ण परमहंस परस्पर चर्चा में शिष्यों को बता रहे थे, मनुष्यों में कुछ देवता पाए जाते हैं, कुछ सामान्य कोटि के मनुष्य ही और शेष तो नरपिशाच ही होते हैं। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, ने पूछा, भला इन नरपिशाचों, मनुष्यों और देवताओं की पहचान क्या है? परमहंस ने कहा, वे मनुष्य देवता हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्य वे हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी, और नरपिशाच वे हैं जो दूसरों की हानि ही सोचते और करते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें स्वयं ही हानि सहनी।

0: पड़े। सदाचार मनुष्य को देवता भले न बना सके, नरपिशाच होने से उसे बचाए रखता है। नगर में सेठ जी की दवा की दुकान थी। दुकान खूब चलती थी। देखते ही देखते सेठ जी की नगर के प्रतिष्ठित धनी व्यक्तियों में गिनती होने लगी। दलालों के माध्यम से उन्होंने ये प्रचारित कर दिया था कि उनकी दुकान में दवा के मूल्य में छूट मिलती है जो किसी दूसरी दुकान में नहीं। सेठ जी अपने नगर में महीने में कुछ ही दिन रहते थे, दूसरे बड़े बड़े नगरों का दौरा लगा ही रहता था। एक बार ऐसे ही दौरे में कुछ दिनों के लिए वे अपने नगर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच उनका युवा लड़का बीमार पड़ गया। सेठ जी की पत्नी ने घबराकर डॉक्टरों की टोली घर बुला ली। डॉक्टरों ने रोग का निदान किया, इंजेक्शन और खाने की दवा लिखकर मरीज को कब कब दवा देनी है समझाकर वे चले गए। सेठ जी की पत्नी ने सारी दवाइयां अपनी दुकान से मंगाकर देनी आरंभ कर दी, किंतु उनके पुत्र की हालत बिगड़ती ही गई। अंत में डॉक्टर फिर बुलाए गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, दवाओं से लाभ क्यों नहीं हुआ? दवाओं की जांच से पता चला कि ये सब नकली है। दूसरी दुकान से दवाएं लाकर दी गईं, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। सेठ पुत्र को बचाया न जा सका। बाद में पुत्र शोक से आकुल व्याकुल सेठ ने स्वीकार किया कि वे नकली दवाओं का धंधा करते थे, जिसका फल ईश्वर ने उन्हें दे दिया। भ्रष्टाचार से अपनी उन्नति करने वाले भूल से ये समझ बैठते हैं कि इससे बुराई समाज के अन्य लोगों की हो रही है और उनकी तो उन्नति हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की धनाशक्ति उसे ये सोचने ही नहीं देती कि इस धन का उपयोग करने वाला कौन है। भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मा की रक्षा नहीं कर पाते। गांव का एक दुकानदार गरीबों को उधार सौदा देता था और अपनी बही पर मनमाने ढंग से दिगुना तिगुना मूल्य लिखकर गरीबों को फुसला फुसला कर उसे वसूलता था। सूद पर जो रुपये कर्ज देता था उसे भी गांव वालों से दुगुने तिगुने रुपये का कागज बना बनाकर उनके अंगूठे का निशान लगवाकर कानूनी तौर पर अपना दावा पक्का कर लेता था। अपने मूलधन से कई गुना रुपये दुकानदार को देने के बाद भी गांव के गरीबों का कर्ज चुकता ही न था और उधर बनिए के घर सोना बरसता था। एक दिन रात में दुकानदार के घर में अचानक आग लगी। उसकी पुकार पर गांव वाले जुटे। बार बार दुकानदार गांव वालों से अपने उन दोनों बक्सों को लाने के लिए कहता रहा जिनमें आभूषण और कर्ज के कागजात थे। गांव वालों ने बड़े परिश्रम से जान की परवाह न कर दोनों बक्से निकाल दिए। बाद में दुकानदार को होश आया कि उसका 5 वर्ष का इकलौता बेटा तो घर में खाट पर सो रहा है। लड़का गंभीर रूप से जल जाने पर निकाला जा सका और चिकित्सा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भ्रष्टाचारी पहले तो खूब उन्नति पाता है, शत्रुओं पर विजय भी पाता है। उसे लगता है कि उसकी बुराई तो हो ही नहीं सकती, किंतु निश्चित रूप से अंत में उसका समूल विनाश होता है। गुरु नानक ने पाप की कमाई की रोटी से खून टपकाकर और परिश्रम की रोटी से दूध निकालकर यह संदेश दिया था कि भ्रष्टाचार से बचने में ही हमारा कल्याण है। भ्रष्टाचार ऐसी जहरीली गैस है जो अपने बनाने वाले को भी अपनी गोद में समेट लेती है।
1: तो भी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: तो अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 23

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं,

तो अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। और आइए बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। स्वास्थ्य वार्ता का समय होगा सुबह 7:20 का। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई।

केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से और विविध भारती के कार्यक्रम आप पुनः सुनेंगे 3:00 से। 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से और 4:02 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे 5:00 और 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी का समय होगा 6:02 का और 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार का समय होगा संध्या 7:15 का। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे संध्या 7:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत का समय होगा रात्रि 8:00।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रजनीगंधा का समय होगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: तो अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता में। नाक, कान, गला एवं माथा संबंधित बीमारियों के कारण, लक्षण एवं बचाव बता रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार, और उनसे बातें कर रही हैं श्वेता रानी।
1: श्रोताओं, नाक, कान, गला और सर, ये सभी संबंधित होते हैं एक दूसरे से और हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो इनसे संबंधित हमें किस तरह की परेशानियां होती रहती हैं और इससे बचे रहने के लिए किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, सभी चीजों के बारे में आइए जानकारियां हासिल करते हैं आज के कार्यक्रम में गला, कान, नाक और माथा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। आमतौर पर नाक, कान और गले से संबंधित किस तरह की बीमारियां होती हैं?
2: अगर मैं वन बाय वन आता हूँ, कान से संबंधित जनरली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, आइदर ईयर पेन लेकर आते हैं या ईयर डिस्चार्ज लेकर आते हैं या डिक्रीज हियरिंग लेकर आते हैं, तो कान में मुख्यतः यही तीन तरह के, आइदर ईयर एक, ईयर पेन। तो कान में दर्द होने के बहुत सारी कारणें होती हैं। जरूरी नहीं है कि कान दर्द कान की वजह से ही हो, क्योंकि हमारा नाक, कान, गला सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बार पेशेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि कान दर्द मेरे एक्चुअली कान की वजह से हो रहा है कि और दूसरे प्रॉब्लम के साथ। जैसे कान दर्द अगर हो रहा है कान की वजह से है, तो आइदर बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी को सर्दी खांसी हुआ, उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसके चलते गले और कान के बीच में एक नली होती है जिसको हम लोग स्टेचन ट्यूब बोलते हैं, उसके थ्रू इन्फेक्शन आपके मिडिल ईयर में ट्रेवल कर जाता है। तो मिडिल ईयर में ट्रेवल करने के बाद एक्यूट कटारल ओटाइटिस मीडिया बनता है।

0: पेन होगा, फॉलोड बाय मिडिल ईयर में सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठेठ भाषा में हम लोग बोला जाए तो कान में पस बनना स्टार्ट होता है, वो पस बनने के चलते पर्दा फूलना स्टार्ट करता है, उसके चलते भी ईयर एक होता है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को कान दर्द था, कान बहा, ठीक हो गया। उसका पीछे रीजन क्या है कि जब तक आपका पर्दा उसको फूल रहा है, वो फटा नहीं है, तब तक वो पेन हो रहा है, वो ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के चलते हो रहा है। जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट किया, पस निकल गया, आपको दर्द से राहत हो जाएगा। दूसरा, बहुत बार पेशेंट को सिंपल सोर थ्रोट हुआ है, सोर थ्रोट में भी उसमें पेन होगा, उसमें रेफर्ड ओटालजिया होता है। बहुत बार पेशेंट का कैरिज टूथ होता है, वो कैरिज टूथ के चलते भी रेफर्ड ओटालजिया होता है। हमारा जो जबड़ा है उसको खोलने बंद करने का एक ज्वाइंट होता है, जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं, उसके पेन के चलते भी आपका रेफर्ड ओटालजिया कान में होता है। तो जनरली अगर बचाव करने की बात हुई, तो अगर सोर थ्रोट होता है तो हमारा नॉर्मल परसेप्शन होता है कि दवा दुकान गए, दवा लिया, खा लिया। जब ये दवा लेके आप खाते हैं तो आप कंप्लीट डोज नहीं लेते हैं। इसके कारण इसका जो मेन रूट काउज है ये खुद हम है। नॉर्मली दवा दुकान में गए, दो दिन का दवा आपने ले लिया, दो दिन में आपका कीड़ा ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं मरेगा, वो मरा, लेकिन पूरी तरह से जब वो खत्म नहीं होगा तो वो अपने आप को उस एंटीबायोटिक से बचाव के लिए एक बचाव प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन उस दवा की एक प्रॉपर डोज खाइए जो रिटेन ऑन द बुक है। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट की, इसका कहते सर कान दर्द दे रहा था तो कान में तेल डाल दिया। कान में तेल पानी नहीं डालने का, आप गर्म करके तेल डालते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन होता है या पर्दा उसमें और लाल हो जाता है, तो उससे भी पर्दा फटता है। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट आते हैं नाक की प्रॉब्लम लेके, बोलते हैं कि मेरा नाक में मांस बढ़ गया है, नाक में पॉलिप होता है, इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें नाक में मांस बनता है। लेकिन 100 में 80% पेशेंट नॉर्मल टर्बिनेट को ही देखकर वो बोलते हैं कि इसका कहते हैं मेरा नाक में मांस बढ़ गया। इट इज नॉर्मल टर्बिनेट, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी बहुत सारे कारण से, आपको अगर एलर्जी है उसमें भी टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी होगी। एलर्जी के लिए मेन है कि आपको एलर्जी पहचानना होगा। एलर्जी तीन ही तरह का चीज से होता है, चाहे कोई मुंह से जाने वाला चीज होगा जिसको हम लोग अपने टर्म में इंजेस्टेंट बोलते हैं, चाहे कोई नाक से जाने वाला चीज होगा जिसको हम लोग इनहेलेंट बोलते हैं, चाहे कोई शरीर में टच होने वाला चीज होगा जिसको हम लोग कॉन्टेक्टेंट बोलते हैं। अगर पेशेंट एक चीज को गौर करे कि मेरे को किससे बढ़ता है सिम्टम, आइदर छींक आना या आंख में इचिंग होना या गले में खराश होना या सांस फूलने की बीमारी होना या उछलना, अगर वो गौर करते हैं कि मेरे को जिस चीज से हो रहा है उसे अवॉइड करेंगे तो उनका एलर्जी भी ठीक हो जाएगा। जो वो नाक में मांस का कंप्लेन लेकर आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा।
1: जनरली नाक कान आंख की जो बीमारियां होती हैं सर, वो तो संक्रमण से ही फैलती हैं।
0: नहीं नहीं मैडम, संक्रमण वन ऑफ दी काउज। अगर आपको साइनसाइटिस है, हमारे शरीर में 4 साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस है, इथमोइड साइनस है, फ्रंटल साइनस है, स्फेनोइड साइनस है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो हम बोलते हैं उसमें तो कहीं पर भी तो साउंड का एम्प्लीफिकेशन होना चाहिए ना। इट इज होलो बोन। सेकंड, स्कल बोन अगर पूरा भारी रहे, अगर होलो नहीं रहे तो इतना भारी हो जाएगा कि आपका एक स्पाइनल कॉर्ड उसको संभाल नहीं पाएगा। इसकी इसीलिए बनाया जाता है। तो अगर वो साइनस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उससे जो फ्लूइड निकल रहा है उसको स्क्रीट करना है थ्रू दी नेजल, नाक के थ्रू वो स्क्रीट करता है, सर्दी में होता है, वो स्क्रीट करना है, उसका पानी हमेशा निकल रहा है और वो अननोइंगली आप इनगल्फ भी कर रहे हो, तो वो साइनसेस को ब्लॉक अगर हो रहा है तो कहीं भी पानी रहेगा जमा तो वो सेकेंडरी इन्फेक्ट करेगा। हमारे पास बहुत बार पेशेंट सर दर्द के लेकर आते हैं कि सर दर्द है सर, हमको साइनस हो गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि साइनस मेरे पास है, भगवान मेरे को ऑलरेडी दे के भेजा है। साइनस की बीमारी को बोलते हैं साइनसाइटिस। जरूरी नहीं है कि आपका हेडेक साइनसाइटिस की वजह से ही हो, उसकी और भी कॉज होती हैं। आज हमारा दिनचर्या ऐसा हो गया है कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ टेंशन से रहते हैं, तो आज के डेट में मोस्ट कॉमन कॉज टेंशन हेडेक। बोलिएगा कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक एक्चुअली आप नहीं करते हो, आप गए वहां पर घूमे, घूमते नहीं है, 4-5 आदमी से गप कराए फिर आ गए, तो ये इट इज नॉट मॉर्निंग वॉक। आज के डेट में जो मेजर लाइफस्टाइल डिजीज जो हो रहे हैं, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ये मेरा लाइफस्टाइल के चलते ही हो रहा है और इसका इम्पैक्ट मेरे होल ऑफ बॉडी पे पड़ा है। उसमें ईयर को भी इन्वॉल्व करता है, जो मेरा इनर ईयर है जहाँ से मैं सुनने का क्षमता है उस चीज को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता
1: है। कई बार होता है कि कान के ऊपर भी जख्म हो जाता है और पूरे कान को कवर कर लेता है, तो वैसे स्थिति में किस तरह से साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए और वो जख्म किस वजह से होता है?
0: जो कान में पस निकलता है उसका दो काउज होता है, एक सेप परफोरेशन होता है, एक अनसेफ परफोरेशन होता है। सेफ परफोरेशन में आपका केवल कान से जो डिस्चार्ज आएगा वो पानी के जैसा आएगा या हल्का फुल्का पस रहेगा जो दुर्गंध। दूसरा परफोरेशन होता है डेंजरस परफोरेशन, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद एटिक डिजीज, एटिको एंट्रल डिजीज बोलते हैं। उसमें जो हमारा कान के पीछे एक बोन होता है टेम्पोरल बोन, जिसमें मेरा कान का ऑर्गेन रखा हुआ है, कान से केवल हम सुनते ही नहीं,

0: हुआ है, तो जख्म बना हुआ है, तो ये परफोरेट अगर आपके आउटर साइड पे किया, बिहाइंड द ईयर किया, तो वहां पर आपको सब पेरियोस्टियल एब्सेस हुआ। सब पेरियोस्टियल एब्सेस वो बोन को लीक करके आपका पस वहां पर पस एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जनरली हम लोग सीएसएम में और उसका सीएसएम पहचान, कोई पेशेंट जानना चाहे कि हमको सेफ डिजीज है कि अनसेफ डिजीज है, कुछ नहीं करना। आपका जो मवाद निकलता है उसको लेके थोड़ा सा स्मेल आउट कीजिए कि उसका गंध कैसा आ रहा है। डेंजरस परफोरेशन में फॉल स्मेलिंग मीन्स, फॉल स्मेलिंग मैंने एकदम सड़ा हुआ मकेगा, अगर वो डेंजरस परफोरेशन, उसकी इलाज फिर सर्जरी करके हम लोग उसके पूरे बोन के जितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सबको बाहर एक्सपेल्ड आउट करते हैं।
1: ये तो हो गई नाक और कान की बातें। आंखों की बातें अगर हम करें सर, तो आंखों से संबंधित भी बहुत सारी परेशानियां हमें आमतौर पर होती रहती हैं, खास करके आज लाइफ स्टाइल में जहां हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का, तो उसका तो बुरा असर हमारी आंखों पर पड़ता ही है। बहुत सारे जो वातावरण में धूल कण वगैरह है उसका भी असर होता है हमारे आंखों पे। सर आंख के साइड में जो है व्हाइट व्हाइट कलर का एक कुछ जमता है सर, वो क्यों जमता है?
0: इट इज मेम्ब्रेन। तो पानी में जो रहते हैं जानवर, तो उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जो पानी के अंदर खुला रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही मेम्ब्रेन का रिमिनेंट पार्ट है, वो कोई बीमारी नहीं है। समटाइम्स एंगुलर कंजक्टिवाइटिस होता है, उसमें इन्फेक्शन होने लग गया बराबर, तो इचिंग या रेडनेस वहां से स्टार्ट। बहुत बार वो मेम्ब्रेन बढ़ते बढ़ते बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में टेरिजियम कहते हैं। बहुत बार पिंगिक्यूला के रूप में वहां पर एक सिंपल ड्रॉपलेट रहेगा, उसके चारों साइड रेडनेस रहेगा। तो पिंगिक्यूला टेरिजियम में इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेटर ऑन सर्जरी करके रिमूव आउट कर देते हैं।
1: सर लेकिन आंख के साइड में जो व्हाइट कलर का जमता है वो सारे लोगों को नहीं, किसी किसी को ही आंखों में इस तरह से हो रहा है?
0: है सबको, किसी का मेरा अस्का कहते हैं जो टीयर्स ग्लैंड जो टीयर्स बना रहा है, किसी का ज्यादा बन रहा है, किसी का कम बन रहा है। टीयर्स बन रहा है 24 घंटा बन रहा है, इसका एक्सट्रीम पाथवे भी है, आपके आंख से होते हुए वो नाक के थ्रू उसको इनगल्फ कर रहे हो। अगर ये पाथवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो क्रिएट करना स्टार्ट करेगा।
1: आम बोलचाल की भाषा में आंख आना कहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में किस तरह की देखभाल की जरूरत होती है सर, और उसके साफ सफाई का हमें किस तरह से विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए?
0: इसको हम लोग बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसका एक आंख हुआ, उसके दूसरा आंख भी हो जाता है। इसका कारण है कि आप वो जब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते, तो इट इज इरिटेटिंग। जब इरिटेट करता है बार बार आंख, हाथ से आंख छुए, दूसरा आंख को छुए, तो आपने इन्फेक्शन को एक आंख से दूसरे आंख में ट्रेवल कर ट्रांसमिट कर। आंख को सुबह उठ के एक बॉल पे रुकॉटन डाल के पानी डाल के उसको खोला लीजिए, वो जब ठंडा जाए पानी गार के आंख पोंछ करके हम लोग एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप्स देते हैं, तो वो दे दीजिए। हार्डली पेशेंट 5 to 6 days में रिकवर कर जाता है। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो आंख को, बहुत बार कॉर्नियल अल्सर होता है, आंख में चोट लगा उसको भी वो आंख आना ही समझते हैं, तो वो अलग चीज है। इसका पहचानने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप सामने वाले के जहां पर कंजेशन जो लालिमा दिख रहा है, वो लालिमा को एक पलक से उसको पहले ब्लेंच कर दीजिए। ब्लेंच करने के बाद हटाइए और सिंपल सा देखिए कि जो ब्लड का फीलिंग हो रहा है वो किधर से है। कॉर्निया कहने का मतलब जो बीच का ब्लैक पार्ट देख रहे हो, वो ब्लैक पार्ट से अगर आउटर के तरफ जा रहा है देन इट इज कॉर्नियल कंजेशन, और अगर नीचे से कॉर्निया के तरफ जा रहा है, बीच वाले काले के तरफ जा रहा है, देन इट इज कंजक्टिवल कंजक्शन। तो अगर कॉर्नियल कंजेशन है तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप कंसल्ट नहीं करोगे, कॉर्नियल अल्सर है, तो इट माइट बी कि आपका कॉर्निया डैमेज कर जाए, और एक बार अगर डैमेज कर गया तो आपका विजन पर हैम्पर करे।
1: अब आते हैं माथा से संबंधित जो भी परेशानियां होती है सर, बहुत सारी महिलाएं स्पेशली माथा दर्द से बहुत परेशान होती है, तो इसका क्या कारण होता है सर? ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है महिलाओं में।
0: अभी तक मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है इस पे मैंने माइग्रेन बहुत कॉमनली देखा है। तो माइग्रेन का मेन काउज है कि आपका वेसो डायलेट, ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होता है, जो ये डायलिटेशन करवाता है, इसी के चलते आपको जो सिम्टम स्टार्ट होती है हेडेक होगा, हेडेक एसोसिएटेड विद नौसिया या वोमिटिंग, चाहे उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना,
1: जी मचलाना
0: जिसको कहते हैं। सेकेंडली उसको इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ा। थर्डली उसको वटाइगो भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग जनरली जो अभी लाइफ स्टाइल है, हम लोग जंक फूड्स के आदि होते जा रहे हैं, तो उसमें जो एजिनोमोटो है, एजिनोमोटो वन ऑफ द कॉज की इट इज वेसो डायलिटेशन। दूसरा जो गांव देहात की महिला की नहीं, चाय पीने से हमको अच्छा लगता है, लेकिन जो आप टी या कॉफी लेते हैं तो उसमें टी में कैफीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, तो इट इज वेसो डायलेट, तो वो भी वेसो डायलिटेशन कराता है, उसके चलते भी हो सकता है। एक सिंपल सा बात है कि अगर किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है एसोसिएटेड विद अगर नौसिया वोमिटिंग है, तो मींस वो माइग्रेन है। पेशेंट जो थोड़े मोड़े लिटरेट है वो नेट में पढ़ लेते हैं हेडेक मींस ब्रेन ट्यूमर, तो इतना जल्दी नहीं एक बकाना है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
1: तो सर जैसा कि आपने कहा जी मिचलाना, चक्कर आना, ये सब तो सेम सिम्टम्स जो है सर, वो आधा माथा दर्द जो होता है उसमें भी इसी तरह का होता है, तो ये

0: माइग्रेन का जो बोलचाल भाषा में आप लोग अतकपारी बोलते हैं, माइग्रेन को हिंदी में अतकपारी ही समझिए। अगर आपका दोनों साइड का वेसल डायलेट कर गया तो होल में होगा, और अगर एक साइड हो रहा है जनरली वन साइड होगा, तो माइग्रेन का हिंदी नाम ही अतकपारी है। दूसरा, बहुत सारे पेशेंट को टेंशन हेडेक होता है, एक्स्ट्रा टेंशन ले लेते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर माइग्रेन होगा तो आपको हेडेक ऑन द मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, और टेंशन हेडेक होगा तो मॉर्निंग में आप अच्छा रहोगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे होगा, मतलब तो वो शाम के वक्त ज्यादा होगा। और माइग्रेन मॉर्निंग समय हो सकता है कि आपको सर दर्द नहीं हो, लेकिन हेवीनेस ऑफ दी हेड होगा, लगेगा कि माथा पकड़ा हुआ। आज के डेट में हाइपरटेंशन भी वन ऑफ दी काउज है, कि बहुत जन को अननोन हाइपरटेंशन बहुत रेज रहता है, सुबह से उठेगा भी तब भी उसको अच्छा फील नहीं हो। तो पहला चीज कि अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, 7 से 8 घंटा का आप रात में नींद लीजिए, सुबह में आधा घंटा के लिए ही वॉक कीजिए, वो कंपल्सरी कीजिए। आपको बहुत सारा जो डिजीज हो रहा है ये ड्यू टू हमारा लाइफ स्टाइल के चलते हैं।
1: सर आपने बहुत सारी जानकारियां दी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू मैडम।
2: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता में पुनः प्रसारण। नाक कान गला एवं माथा संबंधित बीमारियों के कारण, लक्षण एवं बचाव, बता रहे थे डॉक्टर अमित कुमार, और उनसे बातें कर रही थी श्वेता रानी।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में गाए इस गीत को।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: तो कार्यक्रम गीत संगीत में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अभिजीत की आवाज में गाए इस गीत को।

0: और फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं पे समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते, और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल

0: होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक है। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़।

0: रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की

0: संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit Shadow.

0: investment headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency chargesheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in the Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Zarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए। पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पात्र उम्मीदवार इस योजना के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि भारी बारिश के बावजूद सभा में उमड़ी भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनने जा रही है।
3: जो माहौल दर्शा रहा है, ये हाल की भूमि जहां पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में आकर इस उर्वरक का रखाना को स्थापित किया था, वो यही दर्शाता है कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। बारिश इतनी थी, मैं खुद कॉन्फ्यूजन में था कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आना पहुंचना ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
2: शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उनसे शराब कारोबार में भूमिका और कारोबारियों से संबंधों पर सवाल किए। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान से धमकी मिलने के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार से मुलाकात की। विधायक को अब 4 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। चटर्जी ने अपराधियों के नेटवर्क को

0: पूरी तरह समाप्त करने की मांग की। उन्होंने बोकारो में सांसद ढुल्लू महतो के बयानों को अमर्यादित भी बताया।
1: देखिए, नेटवर्क जब तक नहीं टूटेगा तब तक सिर्फ सुरक्षा गार्डों को बढ़ा देना ही सुरक्षित नहीं हो जाता। तो ऐसे तमाम क्रिमिनल्स, इनको एक भय पुलिस का होना चाहिए। तो इनकी नेटवर्क टूटनी चाहिए, जो इनको संरक्षण दे रहा है उन पर ग्रिप होना चाहिए, तभी जाके हम समझते हैं जो ऐसे लोग जो है क्राइम से पास आएंगे।
0: रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने SIR को लेकर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को 29 जुलाई तक घर घर जाकर 100% काम पूरा करने का निर्देश दिया। लापरवाही बरतने पर सिल्ली विधानसभा के 2 BLO पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष और नलीन कुमार को सदस्य मनोनीत किया गया है। उड़ीसा में आज आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के DGP और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में अंतर राज्य सुरक्षा, सीमा विवाद और उग्रवाद नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में पूर्वी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला की ऐतिहासिक रथ यात्रा के संरक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्थायी रथ आसन भवन के निर्माण की घोषणा की है। कल रथ निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर बताया। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी में सर्वाधिक 79.8 मिलीमीटर और रांची में 37 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले स्थानों पर नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर शहर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
3: रांची की जो हालत है, एक बारिश में पूरा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। जब रोशनी खलखो जी दिल्ली जाकर वार्ता की तो उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई कि राज्य सरकार से, नगर विकास विभाग से जो योजना बना के 2500 करोड़ का मांगा गया था, 600 करोड़ का ही योजना भेजा गया।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है जिस पर भाजपा का ही कब्जा है।
4: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का यही फितरत कि जब वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जवाबदेही से भागेंगे तो उसका ठिकरा विपक्ष के सरकार के ऊपर, और यही परिस्थितियां रांची में भी है, झारखंड में। नगर निगम को किसी भी प्रकार का फंड का

0: मेहनत नहीं, लेकिन चूंकि अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी से भागना है तो आप कार्य योजना बना करके दो।
1: रांची में अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का रोमांच जारी है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से आए लगभग 438 नन्हे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में इस स्तर की शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में बड़ा कदम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बदलाव की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत व मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण अंतरिम महासचिव। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीएम हेमंत सोरेन ने की पर्यटन खेलकूद युवा कार्य विभाग की समीक्षा, खिलाड़ियों का डाटाबेस बनाकर दी जाएगी सहायता। प्रभात खबर के शब्द हैं, रांची के एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने की तैयारी में था, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने प्रिंस खान के गुर्गे को पैर में मारी गोली। दैनिक जागरण लिखता है, नवजात की मौत के बाद रिम्स की तीसरी मंजिल से कूदी मां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रूपये, पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है मॉर्निंग मेलोडी बस कुछ ही पल में।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में गाए बॉर्डर फिल्म का ये नगमा।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक

0: क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। संजय छैल की शब्द रचना और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोता, हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। और रात को 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुनना नहीं भूलिएगा। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, ये है जलवा फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में समीर की रचना, हरीश जयराज का संगीत। मुझे

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में फिल्म से। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, हैरिस जयराज ने इस गीत की धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का गीत। समीर के ही बोल है, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें।

कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अंदाज से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण की बनाई तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: हाँ।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हरगिज़ नहीं, खुद्दार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।

0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एस यू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
1: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
2: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
1: इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
2: आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती।
1: मैं वापिस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है। इससे पहले कि आप मेरे दरमियान कभी न हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए, चलिए कहीं भाग चले।
2: या आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चाहिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पियो देवदास।
2: क्यों?
1: कुछ ही दिन वे पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे।
2: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश ना आने पाए।
1: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
2: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
0: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार। साल 1966।
3: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूँ वो बदबख्त मैं हूँ जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है, वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगह दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए, फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूँ ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
1: शंकर,

0: मैं यहाँ से चली जाऊँ, हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ, बस करो शंकर।
1: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
2: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
3: गाना खत्म हो गया सरकार।
0: ओ, गाना खत्म हो गया। बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
3: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ।
4: चंपा, चंपा, बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो एक ही रुपया देकर टरका दिया करता, उसने 2 रुपए दिए भैया को।
3: अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी।
4: आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2।
2: लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए। जरा सुनिए कि दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रहे हैं।
0: कब आए?
5: सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए।
0: हाँ, इतना बड़ा झूठ।
5: इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल 100-100 साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें एक जैसे झील में खिले हुए 2 कवल देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठते हैं, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारे इन जुल्फों की छाव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा,
0: ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। शंकर,
5: तुम चली जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए 100-100 साल का हो जाएगा।
0: शंकर,
5: रूपा।
2: दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें।
6: मैंने लोगों का अधिकार छीना। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। वाणी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
5: मेरा भाई मर गया।
6: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर वाणी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता।
5: हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं है। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं है। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले।
6: मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं।
5: ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है, ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना,

0: और उनको मार डालना, किसी का अधिकार नहीं।
1: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
2: अरे क्या बकता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4,
2: अरे 1 2 3 4,
4: तुम भी थप्पड़ रखे।
3: एंटी फैन सेंटीमेंट,
2: क्या
3: एंटी फैन सेंटीमेंट,
2: अरे हार्ट सेंटीमेंट,
4: अरे
2: अंग्रेजी बोलने वाला,
3: एंटी फोर,
2: एंटी फोर,
3: सेंटी फूस,
2: सेंटी फूस,
3: ओके,
2: अरे रे,
3: अरे।
1: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
5: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ।
6: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने, बमन जी कागजात पर साइन करवा लीजिए।
5: हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेट लेटिव चोर, तो जल्दी साइन कर दो, थोड़ा देख लो और देख लो पर जल्दी। हाँ
6: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
5: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा, इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे, क्यों सर?
3: पर ये लोग तो बटाटा था, तुम आते और सिग्नेचर करके आए, कौन लोग बटाटा था?
5: अरे यही लोग बटाटा था।
2: क्या बटाटा था?
3: कि तुम आते और साइन करते है कागज पर।
2: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब,
3: तो साइन नहीं करने का।
2: आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाँ वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।
3: तो बच्चे बता तुम्हें खेल ले जाओ,
2: तुम्हें भी खेल ले जाओ,
3: होता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबू।
1: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगले आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
7: तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो,
8: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें।
7: यकीनन।
9: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है।
7: यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
9: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
7: तो फिर नस्ले तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस असीम शान तख्त व ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
9: मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं।
7: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की बाजेब बनाना चाहते हो, तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और तुम
9: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
7: खामोश।
9: अगर आज शहनशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
7: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देना।
9: एक तंग दिल शहनशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है, जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहनशाह अकबर की मौत पहले होगी।
1: फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
10: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
11: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
10: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
11: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
10: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
11: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।

0: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
0: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
3: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह।
4: और तुमने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
3: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
4: वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर है जिस पर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
3: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
4: समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जे खड़ा तू और जे खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
3: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
4: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
2: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
5: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।
6: ए भाई, ए, ए, ए भाई, ओ भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का बता जरा भाई। अरे सब, ये सब गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। ए भाई साहब।
5: हाँ सुधा, थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा।
6: ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे इधर देखो क्या हो रहा भाई, अरे पूरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है? अरे कोई बचा लो रे। अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है, बुरी हालत है भाई। अरे कोई बचा लो, ओ भाई साहब। अरे कोई है? अरे कोई आओ। अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे। गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है भाई साहब, वो मर जाएगी। आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मेहनत कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, भाई साहब आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब।
2: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
7: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, बस कुछ ही पल में।

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: तो दोस्तों, आज के इस सुहाने सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त वंदना अर्चना। कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जोहार। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों, हर एक नई सुबह हमें फिर से जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता, हम आज क्या करते हैं बस सिर्फ

दोस्तों, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बदलेंगे जरूर।

दोस्तों, कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। जी हाँ दोस्तों, लगातार दो दिन के बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। चारों ओर हरियाली और मन तरोताजा हो गया है।

0: तो श्रोताओं आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश। दिनांक 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं इसी से संबंधित एक संदेश।
1: लौट कर बैंक से चेक वापस आ जाए घर, लौट कर बैंक से चेक वापस आ जाए घर, जो धड़कने लगे दिल, लगने लगे डर, तो विकल्प आपके पास अब भी है शेष, तो विकल्प आपके पास अब भी है शेष, 18 जुलाई 2026 को लगने जा रही अदालत विशेष, लगने जा रही अदालत विशेष। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA हजारीबाग की ओर से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर हजारीबाग के नेतृत्व एवं DLSA हजारीबाग के माननीय सचिव महोदय के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर समाधान करना है। इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। आज इस विशेष लोक अदालत से संबंधित मैं अनंत ज्ञान DLSA हजारीबाग की ओर से कविता का पाठ करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप इस विशेष लोक अदालत को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सुनिएगा, कविता है जो कि खोटा में है, मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है घूर के आए गलो बैंक से चेक। घूर के

गेलो जमीन गेलो जमीन आर गेलो खेत घुर के आए गलो बैंक से चेक फूटल किस्मत आर फूटल कपार ककर जुगुर करियो हामी गोहार पीठ पाछू मारल कौ छुरिया फेक घुर के आए गलो बैंक से चेक घुर के आए गलो बैंक से चेक अगे मैया की करियो देख घुर के जे आए

कान्ना रे नूनू उपाय हो एक, सनिचर के लागतौ लोक अदालत विशेष, सनिचर के लागतौ लोक अदालत विशेष, 18 जुलाई 2026 याद रख डेट, कान्ना रे नूनू गोसा फेंक, लोक अदालत में जाय के देख, स्पेशल लोक अदालत बैठतौ देख, सुलझतौ सभिन के चेक बाउंस केस, सुलझतौ सभिन के चेक बाउंस केस, स्पेशल लोक अदालत नूनू हौ बड़ी बेस, मुफ्त में सुलझतौ चेक बाउंस के केस, मुफ्त में सुलझतौ चेक बाउंस के केस, घुर के आय गलो बैंक से चेक, अगे मैया की करियो देख, अगे मैया की करियो देख। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

और आइए जानते हैं मौसम का हाल। आज सूर्यास्त होगा संध्या 6:43 पर और कल सूर्योदय होगा सुबह 5:12 पर। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस।

दोस्तों, अभी हाल ही में मौसम से जुड़ी रिपोर्टों में अल नीनो शब्द का जिक्र कई बार सुनने को मिला, तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में अल नीनो क्या है और इससे और इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो विश्व भर के मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है और यह चक्र हर 2 से 7 साल में घटित होती है और दुनिया भर के मौसम, बारिश और तापमान को बुरी तरह प्रभावित करता है, क्योंकि यह जो होता है यह प्रशांत महासागर से पश्चिम प्रशांत से चलने वाली हवाएं को गर्म पानी को भारत के तटों की ओर धकेलती है जिससे अच्छी बारिश होती है, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती है और गर्म पानी दक्षिण अमरीकी तट की ओर जमा होने लगता है। इसके वजह से बारिश जो होता है वो कम होता है और आइए जानते हैं इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर कर देता है और इसके प्रभाव से सामान्य से कम बारिश होती है और जिसकी वजह से सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। कम बारिश के कारण धान, मक्का और दलहन जैसी प्रमुख खरीफ फसलें की पैदावार प्रभावित होती है और उत्पादन कम होने से अनाज और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, यानी महंगाई बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों, बारिश कम होने के कारण भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है और जलाशयों में, नदियों में पानी कम हो जाता है जिससे पीने के पानी की गंभीर समस्या भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, भारत में पनबिजली यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर बांधों से बनती है और पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन में भी प्रभावित होता है जिससे लोगों और उद्योगों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है और अगर उद्योगों में बिजली कटौती होती है तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। सूखे और गर्मी के कारण पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जिसकी वजह से टाइफाइड, डायरिया जैसी और भी कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अल नीनो के कारण वातावरण गर्म हो जाता है जिससे देश में तापमान में भारी वृद्धि होती है और लू जैसी यानी हीट वेव जैसी भी स्थिति बनती है। तो यानी इसका जो असर होता है ये हमारे जीवन पे कई तरह से असर डालता है।

और आइए जानते हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में। आज 7 जुलाई है, तो आज की घटनाओं पर डालते हैं एक नजर।

मीर जाफर बंगाल के नवाब के रूप में 7 जुलाई को यानी आज के दिन 1763 में दोबारा ताजपोशी हुई थी और महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में आज के दिन लाहौर पर कब्जा किया।

हुए और पंडित विश्वमोहन भट्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिष्ठित शताब्दी का सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति सम्मान मिला 1998 में आज के दिन। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पेचिस के नए टीके की खोज की 1999 में आज के दिन और अमेरिका के दूरसंचार उपग्रह डायरेक्ट V-10 के रूस के प्रोटोना एम रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया साल 2007 में और

और आइए जानते हैं किन किन हंसियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मदनलाल मधु हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक थे, जिनका निधन हुआ साल 2014 में आज के दिन। और अर्जुन नैयर, इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे, जिनका भी निधन हुआ 1999 में आज के दिन। और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के सैनिक विक्रम बत्रा, जिनका भी निधन हुआ साल 1999 में आज के दिन। और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर थे अब्दुल कावी देशवानी, जिनका भी निधन हुआ साल 2011 में आज के दिन। और हिंदी सिनेमा के ख्याति प्राप्त अभिनेता थे और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं दिलीप कुमार, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा आज ही के दिन। तो इस दिग्गज अभिनेता को हम याद करते हैं और आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

और आइए जानते हैं किन किन हस्तियों का जन्म हुआ। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन सिंह का जन्म हुआ था 1656 ईस्वी में आज ही के दिन, और दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता थे काला वेंकट राव, जिनका भी जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में आज ही के दिन। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेताओं में से एक थे ठाकुर रामलाल, जिनका भी जन्म हुआ 1929 ईस्वी में आज ही के दिन। और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे राघव जी, जिनका जन्म हुआ 1934 में आज ही के दिन, यानी 7 जुलाई को। और राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व न्यायमूर्ति थे अंशुमान सिंह, जिनका भी जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में आज ही के दिन। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में आज ही के दिन। और प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी थे रणधीर सिंह, जिनका भी जन्म हुआ था 1878 ईस्वी में आज ही के दिन। और अनिल विश्वास प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में आज ही के दिन। और महिला साहित्यकार जो कोंकणी साहित्यिक जर्नल जागा की संपादक थी माधवी सरदेसाई, जिनका जन्म हुआ था 1962 ईस्वी में आज ही के दिन। और प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जिनका भी जन्म हुआ 1981 में आज ही के दिन। तो उन्हें जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

और दोस्तों, बारिश की हर बूंद का सदुपयोग हम कैसे करें? दोस्तों, बारिश का जो मौसम होता है कितना सुहाना लगता है। घर की बालकनी में बैठकर हाथों में गरम कप का प्याला हो और झमाझम बारिश मन को तरोताजा कर देता है। पर लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का जल जमा हो जाता है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो इन पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम अपने घर के छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए। इससे पानी को हम पाइप के जरिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट में, यानी भूमिगत टैंक या होल्डिंग टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं और इस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही बारिश का पानी पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है, तो हमें अपने बगीचे या लॉन में क्यारियां बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी जो होता है वो मिट्टी में रुके और भूजल का स्तर बढ़ सके। साथ ही साथ दोस्तों, घर के निर्माण के समय है, हमें घर के बाहर या बगीचे में एक सोक पिट या रिचार्ज पिट बनाना चाहिए। इससे भी बारिश का पानी को हम जमीन में रहेगा और आसपास का जलस्तर भी बढ़ेगा। साथ ही साथ रेन गार्डन यानी घर या बगीचे के हिस्से में थोड़ा गहरा करके उसमें देसी पौधे लगाना चाहिए ताकि बारिश का पानी जो है वो जमीन के अंदर जा सके और प्राकृतिक रास्ता उसे मिल सके। साथ ही जो घर में होते हैं वे खुले स्थान या पक्कीकरण से बचना चाहिए, यानी आंगन होता है या पार्किंग का, जो पूरी तरह से हमें उसे कंक्रीट से पक्का नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा खुला छोड़ देना चाहिए और पेपर ब्लॉक लगाना चाहिए जहां से भी पानी रिस कर जमीन में जा सके। और इस तरह से हम बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं और आगे हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं।

और आइए डालते हैं स्थानीय गतिविधियों पर एक नजर। आज भगवद गीता पाठ किया जाएगा झील सेंटर, समय होगा 6:30 का संध्या, और सहकारिता पर राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा यूनिवर्सिटी में सुबह 11:00। और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में नमन विद्या स्कूल के खिलाड़ियों ने जीता 36 मेडल। और हंटरगंज में कस्तूरबा जोरी की बालिकाएं बनी चैंपियन। और बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है और सोमवार से लगातार राजधानी के साथ साथ अन्य जिलों में भी बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी झारखंड में बारिश

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवारगी इस एल्बम से। कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल, संगीत नरेश परेश का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फकीर की ये गजल।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

अब के सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना, मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बेहजाद लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में एहसान रिजवी के बोल हैं।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अनोखा प्यार इस फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, जिया सरहदी के बोल, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन। हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएं सब उनके साथ घटित हो रही है। और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसकी, उसमें आपको क्या विशेषता नज़र आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ गई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नए न लड़ जाई है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नए न लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

0: श्रोता बंधु, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:10 हुए हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू ही पूछताछ। राज्य में SIR अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। CEO ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची से मांगा सहयोग। JPSC बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल MS धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में झारखंड समेत देश भर के प्रतिनिधि और शोधकर्ता भी हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। जांच एजेंसी उनसे वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्त विभाग की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल ईडी ने उनके पुत्र रोहित उरांव से भी लंबी पूछताछ की थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के शुरुआती 7 दिनों में 1,05,00,000 से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से BLA2 की भागीदारी सुनिश्चित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग की अपील की है। रांची के बेड़ों में आयोजित राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 254 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 429 विद्यार्थियों के बीच साइकिल और आम के पौधे बांटे गए। मंत्री ने युवाओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग की अपील की। रांची में स्वयंसेवी संस्था नीड्स और XISS के सहयोग से 5 दिवसीय बांस इकोसिस्टम कार्यशाला जारी है। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार 7 जिलों की 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। नीड्स के कार्यकारी निदेशक मुरारी एम चौधरी ने बांस को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
3: ये ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के तहत ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया गया। ये 5 दिन का हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम एक इकोसिस्टम स्टेट में क्रिएट करें बैम्बू का और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनकर आए। हमारा इस योजना में 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़ने प्रोग्राम है 7 जिलों में।
1: रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कराधान, व्यावसायिक कौशल और प्रबंधन सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स

0: हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार भाजपा नेता नीरज सिंह को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर ला रही है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के सहयोग से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम के आज देर शाम तक आरोपी को लेकर शहर पहुंचने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेता नीरज सिंह की गिरफ्तारी पर विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच करने का आग्रह किया है।
1: जो भी आरोपी है अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है तो इसके बारे में हम ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया इनको नहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो इनके ऊपर आरोप क्या, आपका जो FIR है उसमें कोई आरोप स्पष्ट नहीं है। उनके ऊपर आरोप है जिसके कारण से उनको नामजद किया गया है, धाराएं लगाई गई।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आज सुबह के कारोबारी क्षेत्र में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में लगभग 0.4% की तेजी देखी गई, जिससे सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 78592 पर और निफ्टी 83 अंक बढ़कर 24514 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संताल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: में जो पूरा संथाल का इलाका मतलब साहिबगंज, काकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह यहाँ तक में आपको भारी बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। तभी सिस्टम के प्रभाव में अगले दो दिन तक लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 8 तारीख से हल्की से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। भारी बारिश की आशंका थोड़ी सी कम है।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही उनके रांची स्थित सिमलिया आवास के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ है। देश विदेश से फैंस सोशल मीडिया के जरिए भी धोनी को बधाइयां दे रहे हैं। रांची जिला क्रिकेट संघ में वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद सचिव शैलेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष सौमित्र पटनायक के अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शंभू शरण सिन्हा को कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू हुई पूछताछ। राज्य में SIR अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। CEO ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची में मांगा सहयोग। JPSC बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल MS धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर एक कालजयी रोमांटिक गीत है। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमति फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देखकर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है यह आप बताइए।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरा।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं। जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ, ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का यह किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सबके चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो इसमें जो कलाकार है वो वहीदा रहमान है, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आजाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयां नजर भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य

उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना नहीं

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है, तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है, तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
5: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट

0: इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इनमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी

0: अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें तथा पुराने रिकॉर्ड की मैपिंग पूर्व एसआईआर सूची के अनुसार ही करें। साथ ही सभी जिलों को 14 जुलाई को बीएलओ और बीएलए 2 की बैठक के साथ चुनाव पाठशाला आयोजित कर पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी उनके पुत्र से भी पूछताछ कर चुकी है और दोनों के बयानों का दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने रामेश्वर उरांव के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया का होमवर्क चालू कर दिया गया है।
1: मेडिकल कॉलेज भी आप क्या दिक्कत है यहाँ पर? हम बोला 3 से 4 महीने हम चालू ही कर देंगे। फैकल्टी अभी से हमारा चालू हो गया। होमवर्क बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, फैकल्टी लाना पड़ता है, चलाने वाले के प्रोसेस होता है। अभी से हम प्रिंसिपल खोज रहे हैं, डायरेक्टर खोज रहे हैं, डॉक्टर्स खोज रहे हैं, मैन पावर हम बहाली करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि 3 से 4 महीना में या जनवरी तक हम बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करा देंगे।
0: देवघर जिले का प्रसिद्ध आम्रपाली आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। देवघर से विशेष पैकेजिंग के साथ भेजे गए 1000 किलो आम्रपाली आम की पहली खेप दुबई पहुंच गई है। यह आम अब दुबई के प्रसिद्ध लुलू रिटेल स्टोर के काउंटरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। उपायुक्त देवघर सौरभ कुमार घुमानिया ने बताया कि इस पहल से देवघर के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और जिले की अलग पहचान बनेगी। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं की प्रगति की 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। मॉनसून राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संथाल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक है एनसीईआरटी।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारी सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: जी डैम के पास चले जाते हैं। फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
1: लाइक कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया।
2: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
2: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हम भी,
2: जी
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते हैं।
2: जी,
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहे, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले अढ़ाई कोस,

0: ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
1: जी बिल्कुल
0: याद है आपको?
1: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वो सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
1: जी,
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते।
0: तो कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती है
1: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: जाता है,
1: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं.
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे

0: तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी?
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है, तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं
1: जी। ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी
1: जी। और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
1: जी।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं। वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था, वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। हुआ यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए।
3: हाय राम।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नहीं घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें।
0: जी।
1: और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धी
1: और
0: है। जी।
1: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है।
0: जी, तो और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए।
0: जी।
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही है। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो न देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचाएं हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते

0: जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
0: जी।
1: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
0: जी,
1: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी
0: जी।
1: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल देते
0: हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर।
1: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
0: हाँ, ये बात
1: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
0: जी,
1: और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
1: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल है। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं और कुछ लोग
0: और
1: अपना डांस
0: तो
1: का
0: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
1: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
0: बहुत सारे,
1: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया पर
0: नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
1: और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है।
0: जी।
1: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी

बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना?
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव

0: करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है। ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो, तो ठीक है हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो हमें गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है। ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप जरा बताइए कि ये क्या कर रही है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है। देखिए, जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखे भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक

0: रखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो वहां पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है, तो अर्थ बदल जाता है।
1: अर्थ बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं, ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है, और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह तरह के डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहां पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहां पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा,
1: 100 रुपए
0: आज तो हम सबकी हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारी कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें और पुराने रिकॉर्ड्स की मैपिंग पूर्व SIR सूची के अनुसार ही करें। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जुटे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार

0: समाप्त हुए अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: धन्यवाद। कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग वेटलिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो
1: जी।
2: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है।
1: हाँ।
2: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में, अगर ऐसा कुछ समय आया तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, अभी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी। तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली। सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन।
1: पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
1: हाँ।
2: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
2: जी,
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
2: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ ये मेरी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: हूँ। क्या बात है, क्या बात।
2: आई नेवर इमेजिन एनी अदर प्रोफेशन, बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था।
1: हाँ।
2: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है।
1: हाँ।
2: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है
1: जी।
2: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भाई लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
1: जी,
2: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल।

0: पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है
0: बहुत ज्यादा।
1: मैं ये कितने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया
1: जी,
0: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो।
1: अच्छा,
0: तो मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ न कुछ यहाँ पे,
1: हाँ।
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा,
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
1: जी,
0: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह,
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ, उस नजरिए से अगर बात करें,
1: हाँ,
0: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ,
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया,
0: ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है,
1: आइए सुनते हैं।

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल
0: हाँ
1: के लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहां पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते ही काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम
0: हाँ
1: थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी
1: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं,
0: हाँ
1: बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूं रेगुलर, सो
0: अच्छा
1: दैट इज थिंग।
0: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
0: जी
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
0: ओहो
1: गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़
1: हाँ
0: जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था। कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली।
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने वाला जा रहा था कि बच्चा साहब के जवानी में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
0: अच्छा
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था।
0: जी
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म दैट हैपन्ड इन माई लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
0: हाँ, बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
1: जी
0: इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं

0: उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी
1: तो सामने, मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूं, पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
0: ओह
1: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी।
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ
1: हमारा शो और उनका शो, KBC और वो, हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
0: हाँ
1: करने का।
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
0: जी
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे 1 मिनट अलग से बात करनी है, जैसे
0: अच्छा
1: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले 1 मिनट बात करनी है।
0: हाँ
1: तो वो आए, बच्चन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। अरे
0: हाँ हाँ
1: क्या हो गया?
0: अच्छा
1: मैंने सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
0: हाँ
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू
0: ओह
1: लाफ,
0: अच्छा।
1: डर वाला मुझसे होता नहीं
0: हाँ।
1: है।
0: यहां अगर मैं आपसे कहूं कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
1: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूं बहुत सारे गेट टूगेदर्स में,
0: हाँ
1: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
0: ओहो
1: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा
0: क्या बात,
1: पसंद।
0: चलिए सुनते हैं।
2: हम

0: ओ दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का भाग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको

0: 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
0: जी
1: बिमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
0: जी जी जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब, यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को

0: खूब सजाती चींटी,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय।

0: सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, काहिरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादली।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
7: आओ, चलो आओ।

0: फोर्स नो कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हूँ, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड है। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें मम्मी कहते हैं। मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं।

0: बेटा ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
0: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो।

0: श्वेता कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ है?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गपौर हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?

0: वाह कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम आज का हमारा एनसीईआरटी का भाग सुन रहे थे आप सभी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
7: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ दो टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर SDPO श्रद्धा क्रिकेटर का नेतृत्व में गठित पुलिस की छापामारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। और

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सभी सुनने वाले श्रोताओं को शुभ संध्या। संध्या के 5:02 होने को किसान वाणी, हमारे किसान भाइयों का यह कार्यक्रम, अब आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम किसान वाणी में उमेश के दने से जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में बड़े दिन बाद बनल हथिन नाहमता बहन। तो नाहमता बहन तोहरो जोहार।
1: जोहार उमेश भाई, और साथे कार्यक्रम किसान वाणी सुने वाले सभी किसान भाई बहन के हमर देने से भी जोहार प्रणाम, और साथे सभी के स्वागत है कार्यक्रम में। और हमें आ गए है ढेर मनी किसान भाई बहन संगे बातचीत करबे, और साथ में गीतनाद भी सुनेबे। हाँ
0: हाँ।
1: और जानकारी भी हमें सुनेबे। तो आज जे है हमें बात करबे कि अरहर हो गए, उड़द और मूंग है, इस सब के मतलब बहुत बढ़िया पैदावार लिए हम इन का कर सको ही।
0: बिल्कुल।
1: कि मतलब ऐसा कौन काम करिए, कौन उपाय लगाइए जेकर से हम इनके बढ़िया पैदावार हो।
0: बिल्कुल।
1: तो एकर में का है कि सबसे पहले तो हम इनके देखे के है कि बीज के उपचार बहुत
0: हाँ
1: जरूरी हो जाए है, खरपतवार हम इनके निकाले के जरूरी हो जाए है, और कीट के रोकथाम भी करे के जरूरी है, और साथ में जैविक उपाय हम इनके करे के है जिससे कि फल फूल झड़े न बढ़िया हो।
0: हाँ।
1: और हम इनके ओकर से मुनाफा हो।
0: बिल्कुल सही बात कहला नमता बहन। और देखा कि अब धर जे समय है जे अरहर उरीद और मूंग के लगावे के, और देखा कि एकर जे है से किसान भाई बहन तैयारी भी करल थीन और बड़ी किसान भाई बहन लगावत भी हथिन। और दूसरा बात है कि देखा कि एकर जो है बढ़िया पैदावार खातिर ले तू जैसन के कहला कि उपचार करे ले, तो ओकर जो है से हम इनके उपचार भी करे के। और सबसे पहले है कि बढ़िया किस्म के हम इनके जो है चुनाव करे के चाहिए,
1: एकदम बढ़िया,
0: ताकि जो है बढ़िया अगर चुनाव करबे हम इन किस्म के तो बढ़िया पैदावार भी होते।
1: एकदम बहुत बेस्ट बात कहला कि बढ़िया किस्म के हम इनके चुनाव करे के है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन बढ़िया किस्म के चुनाव करे के बाद भी हम इनके बीज के बुआई करे से पहले ओकरा उपचारित जरूर करे के चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उपचारित करे से का हो है कि जैसे कि शुरुआती जे बीमारी आओ है पौधा में, जैसे
0: हाँ
1: कि उकठा रोग हो गए, जड़ सलन सड़न रोग जो हो है,
0: हाँ
1: तो इस सब से हम इन अपन पौधा के बचा सको ही है। अब एकर में अगर हम इन जैविक तरीका से उपचार करिए तो क्या है बीज के जो है ट्राइकोडर्मा जो है,
0: हाँ
1: ट्राइकोडर्मा के 4 ग्राम लिए के हैं।
0: अच्छा।
1: और 1 किलो बीज के हिसाब से,
0: बिल्कुल,
1: मतलब अगर 1 किलो बीज हम इनके उपचारित करे के हैं तो ट्राइकोडर्मा के हम इनके 4 ग्राम के लिए के हैं।
0: हाँ।
1: ओकरा हम इनके घोल बना के उपचारित करे के हैं। अगर रासायनिक उपाय से हम इन उपचारित करे है तो थीरम के 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम के 1 ग्राम दोनों के मिला के हम इन उपचारित कर सको है, या फिर कार्बेक्सिंग और थीरम ये दोनों के मिला के 4 ग्राम हम इनके लिए है, लेके 1 किलो बीज के हिसाब से हम इन उपचारित कर सको ही।
0: बिल्कुल। देखा कि हम इनके जो है घरेलू उपचार भी करे के चाहे, जेकर से हम इनके कहे कि जो बीज में जो कुछ खराबी भी हो तो वो जो है से हम इनके अलग हो जाए। और देखा कि घरेलू तरीका के हम इनके अपना के अगर बीज उपचार करवा तो और भी बढ़िया रहो है। बहुत किसान भाई बहन का करो थी भाई, देखा घर लाके ओकरा जो है से पानी में जो है डाल दो थी, जे तोहर खराब बीज हो ऊपर छपेल जे तो पानी के ऊपर, जो बढ़िया है वो जो है बैठ जा है, ओकर बाद जो है ओकरा धूप में सुखा के जैसन के तू कहला कि 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से अगर हम इनके जो है कार्बन डाइजाइम जो है एकरा मिला के हम इन जो है कर सको ही। और दूसरा बात है देखा कि अभी जो है हम इनके किसान भाई बहन जो है से अब धर धान के भी नर्सरी कर लेती भाई, ओकर बिहन करे थे बिचड़ा कर लेती, तो देखा कि जो है हम इनके एकर साथ साथ एक मूंग और उरीद में भी जो है फूल फल बढ़ावे खातिर भी एक तरीका के अपनावे के है, ताकि हम इन अधिक पैदावार ले सको ही
1: एकदम। और फूल फल बढ़ावे ले हम इनके जरूरत का है कि भाई समय समय पर जो खाद हम इनके दिए के है ओकरा हम इन समय पर दे सको ही है।
0: बिल्कुल।
1: और कोशिश करिए हम इनकी जैविक विधि से ही
0: हाँ,
1: हम इन
0: हाँ,
1: सारा काम करिए खेती के, ताकि हम इनके माटी भी सुरक्षित रहे और
0: हाँ, हाँ,
1: फल फूल भी सुरक्षित रहे, हम इन भी सुरक्षित रह पाए।
0: बिल्कुल।
1: तो समय समय पर हम इन है कि ओकर में जैविक खाद लगावे समय तो गोबर खाद के इस्तेमाल करे के ही चाहिए। और जैसे कि परंपरागत खेती जब हो हले
0: हाँ,
1: तो उस समय का है कि कोई भी रासायनिक मतलब खाद के रासायनिक दवा के नामो निशान नहीं हले।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन फसल बहुत बढ़िया हो हले।
0: हाँ हाँ। पहले तो, देखा कि जो है हम इनके किसान भाई बहन जो है लगवे के पहले गोबर के छिड़काव करो
1: एकदम,
0: और गोबर वो भी देखा कि खादा में जो है बड़ी दिन से रोल है
1: एकदम सड़ल गोबर
0: रोल है, तो वो देखा कि हमन के खाद के बहुत बेस काम करो ले।
1: एकदम मतलब आज माटी में जितना पोषक तत्व के जरूरत हो है पौधा के बढ़वार के लिए,
0: हाँ
1: वो पोषक तत्व गोबर डाले से, गोबर खाद डाले से सब पोषक तत्वों की कमी पूरा
0: कर दो।
1: मतलब आज जरूरत का है कि भाई हमारा इतना पोटेशियम डाले के है, इतना ये डाले के है,
0: हाँ।
1: तो वैसा नहीं, अगर गोबर खाद हम हमेशा अगर अपन खेत में डालते रहिए
0: बिल्कुल,
1: तो वो माटी में उर्वरा शक्ति इतना बढ़िया हो जाए, हाँ, ना कि फिर कोई खाद अलग से तोरा कोई चीज डाले की जरूरत नहीं है। और पहले परंपरागत खेती में यही हो है कि खाली गोबर खाद तो फिर कौन पोटेशियम कौन मैग्नीशियम कितना पोषक तत्व तो हो है, हाँ। कोई चीज के जरूरत नहीं
0: वो
1: है।
0: तो देखा कि किसान भाई बहन उतना जो है से जानकारी भी नहीं रखोल थी, बस इतने जानल थी कि हमारे माटी में गोबर डाले है और गोबर के जो है से हमारे जो कमी है, जो पैदावार कमी हो रही है ओकरा भरपाई करना।
1: और बहुत बढ़िया चीज है भी गोबर, ऐसा चीज है न उमेश भाई की गोबर डाल दिए हमें अपन खेत में और हमेशा डालते रहिए
0: बिल्कुल,
1: तो ओकर में वो माटी में कोई पोषक तत्व के कमी
0: नहीं होता। सही बात।
1: और साथ में हम इनके फसल चक्र जरूर अपनावे के चाहिए कि हर खेत में बदल बदल के हम इनके लगावे के है, तो ऐसा करे से कहा है कि कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं होता, हम इनके माटी भी सुरक्षित रहो है,
0: हाँ।
1: और हम इन भी सुरक्षित रहे। पहले के जमाना में तो देख ला कि जो पुरान बूढ़ बुजुर्ग जो है वो कितना साल तक जीव है, 100 साल तक आराम से एकदम खटखट रहो है।
0: देखा एकर में का है कि देखा गोबर के साथ साथ देखा कि जब पुरान किसान भाई बहन हलती वो कहा कि भाई देखा कि अपन खेत क्यारे के किनारे किनारे करोंज के गाछ चाहे नीम के गाछ ये सब जो है लगवल थी, और ओकर से भी देखा कि जब पत्ते गिर लो चाहे ओकर फल गिर लो चाहे फूल गिर लो
1: तो माटी में मिल के माटी के बढ़िया
0: बना दो,
1: कोई तरह के कीड़ा मकोड़ा नहीं लगो है। बाहर पहले के हमरा याद भी कि भाई इतना मतलब केचुआ मिलो है जगह जगह एकदम पूरा बरसात के समय में, आज के समय में वो चीज है
0: नहीं,
1: जो किसान के मित्र है वही आज के समय में गायब हो गए माटी से। तो पहले के समय में जैसे कि पहले के बड़ बुजुर्ग एकदम खटखट रहो हलथिन भाई, एकदम खेत बाड़ी में खटो हलथिन, आज तो बहुत से ज्यादा 80 साल होते होते हम इनका है कि एकदम देखबा कि भाई वैसा अगर इंसान 80 साल 85 साल का हो गया तो बहुत तरह की बीमारी सजा जाए।
0: देखा बहुत तरह से बीमारी हो गया, और अब धर का है कि हम इनके किसान भाई बहन देखा पहले मड़ुआ गोंदली ताजे है गोड़ा धान ये सब लगवल थी भाई, अब उधर का हो लोग देखा कि हाइब्रिड धान लगवे लगल
1: एकदम,
0: चाहे फिर हाइब्रिड जो है से जैसे हम इन मूंग उड़द जैसे अरहर ये सब राहर के बात करो ये, तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके जो है जे हम इन देहाती को है भाई, देखा देहाती जे गोड़ा धान मड़ुआ गोंदली लगो हल तो वो देखा कि कई गो बीमारी के भी बेस करो ले भाई
1: एकदम।
0: और हम इनके जो है अगर फिर से जो है अगर तुम्हारा स्वस्थ रहना हो तो कहीं ना कहीं हम इनके जो है वही गांव में जो है वही मड़ुआ गोंदली और जो है ई सब के भी खेती करना बहुत जरूरी है।
1: मड़ुआ गोंदली कितना मोटा अनाज के खेती करे के है,
0: हाँ।
1: हम यही कहले चाहिए कि जे भी खेती कर
0: बिल्कुल
1: सब
0: जैविक विधि से करा,
1: मतलब रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक के टाटा बाय बाय कर दिए के है,
0: हाँ।
1: तब भी हम इन सुरक्षित रह सको ये, हम इनके माटी सुरक्षित रह सको
0: बिल्कुल।
1: अगर माटी सुरक्षित रहते न तो ओकर में कहा है कि हम इन आगो बहुत समय तक ओकर में खेती कर सको ये,
0: हाँ।
1: रासायनिक खाद डाले से कहा है कि भाई आज हम आधा किलो डालिए अगले साल है सो 1 किलो मांगते, ओकर अगले साल 2 किलो मांगते, ओकर अगले साल 4 किलो मांगते, तो वो तो खाद के मात्रा बढ़ते जा रहा है।
0: एकर साथ देखवा नहीं कि तुहर माटी भी बीमार हो तो जे भी तू फसल लगे ले हाँ तो वो काहे कि तुहरा जे है से पौष्टिक ना हो तो
1: एकदम
0: वो देखवा कि 1 से 2 दिन तू ना रख सको है बेस तरीके से। अगर तू करेला जिससे करेली तू ले गला बाजार से खरीद के देखवा नहीं कि तू अगर सांझ के ले गला तो तुहरा बिहान तक जो है से वो खराब हो
1: तो गल एकदम खराब हो जाए,
0: कहीं ना कहीं
1: देखा खाद रासायनिक कीटनाशक
0: तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके ये भी अपने भी अंदाजा कर सको थे हम इनके किसान भाई बहन कि भाई देखा जे हम साग सब्जी रख रहे हैं जो खेती करे थी अगर हम अपन घर में ना रख सको ये तो जो खरीदार रहते वो कहाँ से रखते
1: एकदम सही कहला
0: तो एकर खातिर देखा कि हम इनके जो है खेती बाड़ी जे भी करो थी तो कहीं ना कहीं कोशिश करा कि हम जैविक विधि से करिए रासायनिक खाद रासायनिक दवाई से जो है धीरे धीरे छुटकारा पाइए
1: एकदम। आज जैसन की हम कहलिए कि भाई रासायनिक खाद हर साले साल ओकर मात्रा बढ़ावे पड़ो है,
0: हाँ।
1: लेकिन एकर उल्टा जस्ट हो जाए हम इनके कहा कि
0: बिल्कुल
1: गोबर खाद अगर हम इन्हें इस्तेमाल करो ये हाँ, तो इस साल जितना ज्यादा हम इनके गोबर लगले है हाँ, अगले साल ओकर से कम लगता है,
0: कम लगता
1: ओकर
0: है।
1: कम लगता है मतलब हर साल एकर में मात्रा कम लगो है, क्या कि माटी इतना बढ़िया हो जाए ना तो ओकर में बहुत

0: खाद के जरूरत नहीं
1: नहीं पड़े। और देखा तो जो है अपन माटी में बीच बीच में चुनाव डाल सको है, देखा कि करौंज के खली हो गलो चाहे नीम के खली, ये सब जो है खली अपन माटी में डाले के बाद जो है से मिट्टी का फायदा करो है, तो ये सब देखा हम डाल के अपन जो है से अपन माटी के बचा सको
0: एकदम। और आज के समय में तो देख ला कि पानी के जो कितना कमी होले है और जेकर से हम इनके पौधा पर भी फसल पर भी असर पड़ो है, तो हम इन है कि अगर गोबर खाद डाल के जैविक तरीका से हम इन खेती करिए, परंपरागत तरीका से खेती करिए, तो एक में हो क्या है माटी में नमी धारण के क्षमता बढ़ जाए, मतलब कम पानी में हम इन फसल उत्पादन ले सको ही।
1: देखा कि अभी जो है हम इनके मानसून भी ऐसा हो भाई कि देखा आज बारिश हो लो तो चार दिन बाद हो तो
0: एकदम,
1: चाहे फिर जो है से अपन ये जो है ध्यान रखना है हम इनके कि हम जैविक खेती बाड़ी करिए, देखा कि पानी के जहाँ साधन हो वहीं करिए, ताकि जो है हम इनके खेत के नमी भी बनल रहो और ये परेशानी से भी तो बच सको
0: एकदम। तब देख ला कार्यक्रम में हमें नागू भी बातचीत कर बे, अब सुनाओ ये एगो लोकगीत।
1: बिल्कुल, तो आवाज सुनो ये लोकगीत।

0: तो देखा हम आशा करो ये कि भाई हम इनके किसान भाई बहन के गीत बेस लगले होतन। अब देखा हम जानकारी के देने चलो ये अब उधर देखा कि हम इनके किसान भाई बहन के जो है अभी पानी जो गिर लो है दो तीन दिन से गिरे थे तो कहे कि भाई किसान भाई बहन खातिर जो है बढ़िया अभी धान के बिहन करे के मौका दिल के है
1: एकदम।
0: और अपन अपन जो है खेत में अगर बिहन कर लेबा तो फिर तुहरा जो है बेस समय में जो है तुहर बिहन तैयार हो जी तो और तू जो है अपन धान के जो है बढ़िया तरीके से रोपाई कर सको।
1: एकदम सही कहला। और हमें इनके ये भी ध्यान दिए के है कि आज हम इन बात कर पे कि धान के नर्सरी जब तैयार हो जाए है तो वो नर्सरी से जो मुख्य खेत हो है
0: हाँ,
1: वहां तक ले जाए में हम इनके काका
0: सावधानी
1: रखे के चाहिए। हाँ। तो सबसे पहले तो हम इनके कहा है कि धान के जो बिचड़ा हो है ओकरा हाँ। कबाड़े के है जब पौधा में कबाड़ो हुई है तो हाँ। वो पूरा गीला होए के चाहिए और ऊपर से पकड़ के नहीं खींचे के मतलब एकदम जड़ के सटा के पकड़ के और ओकर बाद खींचे के है और
0: हाँ।
1: जब ओकर मुट्ठी बंधा जाए है तो ओकर हम इनके पानी में धोए के नहीं है जड़ मतलब माटी वैसने लगल
0: हाँ,
1: रहे
0: के देखा तो और माटी धोवा जीता तो जो है जड़ तर जो है से जो है अगर तुहर एक दो दिन रुक ला तो जो है जहाँ धान रोपाई करबा तब तक तुहर जड़ सूख जीते
1: एकदम। और ये भी ध्यान रखे के है कि हम इन बिचड़ा कबाड़ के अगर ओकर मुट्ठी बना लिए है तो हम इनके 24 घंटा के भीतर ओकरा लगा दिए के है मतलब ज्यादा समय तक उखाड़ के नहीं रखे के है।
0: यानी कि देखा कि जो है जने अगर तुहरा रोपनी लगल हो तो एने जो है से तो बिहान के रोपाई करते जा तो एक से क्या होता है कि तुहर जो बिहन हो वो जो है कबाड़ के और बचल नहीं रहते।
1: एकदम सही कहला। और हम इनके भी ध्यान दिए कि है कि बढ़िया अगर हम इन पैदावार चाहो ये
0: हाँ।
1: तो पौधा के उम्र जो हो है मतलब कि हम इन जैसे आज लगेलिए तो आज से हम इनके देखे के कि 20 से 25 दिन जब हो जाए है
0: हाँ।
1: यानी कि 4 से 6 पत्ती के जो
0: पौधा हो जाए
1: लगभग
0: हाँ।
1: तो उतना बड़ा पौधा मतलब बहुत बढ़िया मानल जाए रोपाई के लिए। और ओकर से अगर ज्यादा दिन के हम इन पौधा जैसे कि 35-40 दिन के पौधा अगर ले लेबे तो ओकर में फुटाव कम हो कम बाइल फूट।
0: देखा यह खतीले कहल जाए कि भाई समय पर जो हम इन धान के अगर बिहन कर दिए तो देखा कि ओकरा जो है बढ़वार भी बेस्त तरीके से होते और बढ़िया जैसे अगर धान के जो है बिहन थोड़ा अगर पत्ता हो गलो तो ओकरा कहे कि जहाँ हम इनके रोपाई करे के है वहाँ के खेत क्यारी हम इनके तैयारी कर ले चाहिए बेस्त तरीके से ताकि जैसे हम इनके जो है जैसे हमारे बिहन तैयार हुए तुरंत जो है से वहाँ रोपाई कर दिया।
1: एकदम सही कहला। और हम इनके सब चीजें ध्यान दिए के है कि भाई जो जड़ के धोए के न है
0: हाँ,
1: और उखाड़ के ज्यादा समय तक रखे के न है ओकरा तुरंत लगा दिए के है
0: हाँ,
1: तो एक सब चीज हम इन ध्यान रखबे न तो हम इनके जो पैदावार है बढ़िया होते है। और खेत जो हम इन तैयार करो हुए वो भी एकदम समतल हो के चाहिए न
0: हाँ,
1: कि एक तरफ डाउन है एक तरफ ज्यादा ऊंचा है ऐसा नहीं एकदम पूरा समतल रखे के चाहिए।
0: देखा एकदम बेस्ट बात कहला। एक में हम इनके किसान भाई इनके ध्यान देवे के बात है कि देखा कि जहाँ तू बिहन कर ला तो बिहन हम इनके ऐसा जगह में करे चाहिए जहाँ पानी के व्यवस्था हो साधन हो ताकि मान लो कि अगर तुहरा एक सप्ताह 10 दिन अगर बारिश ना होलो तो तू अपन बिहन के जो है से पानी पटा सको। दूसर बात है देखा कि हम इनके बिहन करे के पहले अगर तुहरा धान के भूसी हो चाहे बालू अगर हो तो तू अगर माटी में दे दिला तो जखन तू धान के बिहन कबारबा न तखन जो है से तुहरा जो सबर ना लतो मतलब ज्यादा जो है से कबारे में दिक्कत ना होते और धान जो है से बिहन टूटतो ना इस बात के अगर हम इनके बेस्ट तरीके से ध्यान दिए। और दूसरा बात है कि देखा हम इनके जो क्यारी है आयर है ओकरा में भूस लगल हो तो तोरा जो है से मरम्मती करना बहुत जरूरी हो
1: हाँ।
0: ताकि जो है बारिश हो तो सब पानी बह जितो।
1: तब देख ला कि हम इन कार्यक्रम में फिर आगू भी बातचीत कर पे और
0: हाँ।
1: अब धर हम इन जे हम इनके बीच में एगो किसान हथिन
0: महिला किसान
1: हाँ महिला किसान
0: हाँ,
1: सजदा खातून जे कि हरा मिर्च के खेती के बारे में कैसे खेती करो हथिन अपन जे एक अनुभव है
0: हाँ,
1: वही हम इन साथ साझा कर
0: तो देखा कि इनकर साथ बातचीत कर लेती नहमता परवीन तो सुनल जाए इन उनकर अनुभव
1: एकदम। किसान भाइयों आज हमारे साथ है साजदा जी जो कि हरी मिर्च की खेती कर रही है और रोमी की रहने वाली है तो सबसे पहले तो आपको आदाब।
2: आदाब।
1: तो हरी मिर्च की खेती आप किए हुए है और कुछ देख रहे हैं कि गाछी भी है किया हुआ तो सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि गाछी किस तरह से करते हैं और इसका आप मिट्टी की तैयारी से बताइए कि जो मिट्टी की तैयारी जो करते हैं गाछी करने के लिए वो किस प्रकार करते हैं।
2: मिट्टी का तैयारी करते हैं पहले सूखा जैसे रहता हल्का नमी उसको पहले कोड़ते हैं हम लोग 3-4 बार, घास वगैरह जितना जड़ से निकाल देते हैं। निकालने के बाद में उसको अच्छे से, कहे कि मिर्च के बीज में भी कीड़ा लगता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा गेमिक्सिंग पाउडर डाल देते हैं। हाँ, वो 2 दिन उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद गोबर डाल के थोड़ा सा मिट्टी ऊंचा करते हैं ताकि पानी उसमें जमे नहीं। पानी जमेगा तो फिर बीज सड़ जाएगा, इसीलिए उसमें, और जब बीज को छिड़क देते हैं उसमें डाल देते हैं, फिर ऊपर से हल्का मिट्टी डाल देते हैं।
3: अच्छा, बहुत हल्का मिट्टी,
2: बहुत हल्का, ताकि बीज ऊपर ना रहे।
3: जी जी।
2: उसके बाद 2 दिन गर्म हो जाता है, फिर हल्का पानी छिड़काव उसमें करते हैं।
3: बिल्कुल, तो आप इसमें हमेशा मतलब खेती में गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं ना?
2: गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरा खाद नहीं डालते हैं, गोबर का इस्तेमाल से ही वो हरा भरा अच्छा रहता है।
3: बिल्कुल।
2: हाँ, और जो डालते हैं हम लोग जब बीज निकल जाता है तो जो भी डालते हैं हम लोग, गोबर डालते हैं तो गोबर ही से सब चीज हरा हो जाता है, दवाई वगैरह हम लोग नहीं डालते, इसलिए कि शुरू में ही केमिक्सिंग पाउडर डाल देते हैं।
3: बिल्कुल, बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना भी
2: नहीं करना चाहिए।
3: और ये कितना बड़ा होता है कि इसको फिर आप खेतों में रोप सकते हैं?
2: 1 उंगली से 1.5 उंगली के बीच में हो जाता है, उतना बड़ा हो जाता है, फिर उसको रोपाई हम लोग करते हैं।
3: तो जैसे कि आप बताए कि 1 से 1.5 उंगली का हो जाता है पौधा, उसके बाद आप उसे अपने खेतों में रोपते हैं, तो रोपने से पहले फिर खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं?
2: खेत की तैयारी करते हैं, खेत को अच्छे से जुताई करते हैं, उसमें जितना खर पतवार रहता है सब निकाल देते हैं, जुताई करते हैं ना, जुताई करके जब पूरा खर पतवार निकाल देते हैं, घास निकाल लेते हैं, उसके बाद गोबर मिलाते हैं
3: जी।
2: गोबर मिला करके फिर एक बार जुताई करते हैं ताकि गोबर में मिट्टी पूरा मिल जाए
3: जी,
2: मिल जाए और उसमें नमी बढ़िया बना रहता है, इसीलिए। उसके बाद मेड़ बनाते हैं हम लोग।
3: तो मेड़ जो बनाते हैं, तो मेड़ की दूरी क्या होती है, मतलब जैसे लाइन जो हम लोग बनाते हैं तो उसकी दूरी क्या होती है?
2: 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में रहता है
3: जी। मेड़ जो बनाते हैं वो 1.5 फीट के दूरी रहते हैं ना? और पौधा से पौधा की दूरी क्या होती है?
2: 1 से 1.5 फीट के बीच में लगाने से वो ज्यादा घना नहीं होता है, फल अच्छा पकड़ता है
3: जी। बिल्कुल। और लगाने समय फिर क्या देते हैं?
2: लगाने समय भी हल्का सा केचुआ खाद थोड़ा थोड़ा जड़ के पास डाल करके देते हैं, लेकिन हम लोग रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, जब भी डालते हैं लोग गोबर ही का इस्तेमाल करते हैं।
3: बिल्कुल।
2: जब केचुआ खाद डाल देते हैं लग जाता है, जड़ पकड़ लेता है, करीब 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह जब हो जाता है, हरा हरा नजर आने लगता है, तो फिर उसको एक बार कोड़न देना पड़ता है। कोड़न देने के बाद में उसके बाद फिर उसको पास जैसे हम लोग बोलते हैं मिट्टी चढ़ा देते हैं
3: जी। तो पहले यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि पौधा लगाने का समय क्या होता है, कि सुबह के समय लगाना ज्यादा बढ़िया रहेगा या दोपहर में या फिर शाम के समय लगाना?
2: शाम के समय में ज्यादा अच्छा रहता है
3: जी।
2: शाम के समय में लगाने से होता है कि सूरज किरण का धूप असर नहीं पड़ता है ना, तो लगता है, नहीं तो बहुत सब मर जाता है।
3: बिल्कुल। और लगाने के बाद तुरंत फिर से पानी भी देते हैं ना?
2: हाँ, लगाते जाते हैं, पानी डालते ही जाते हैं
3: जी। और लगाने के कितना दिन बाद फिर उसमें पहला कोड़न पड़ता है?
2: करीब 15 दिन बाद।
3: पंद्रह दिन बाद कोड़न देने का

0: तरीका क्या है?
1: कुरन देने के बाद जड़ थोड़ा सा छोड़ करके, ताकि जड़ उचके नहीं, ढीला ना पड़े, नहीं तो मर जाएगा। थोड़ा थोड़ा जड़ छोड़ करके उसके बाद उसको हम लोग चालना बोलते हैं
0: जी।
1: तो कुरन दे करके फिर दो तीन दिन छोड़ देते हैं धूप लगने के लिए। कोरन देने से होता है ना कि छोटा छोटा घास तो फिर फुनकता, कितनों लोग चुनते हैं लेकिन फिर भी वो निकल जाता है हरा हरा, तो कोरन देने से वो मर जाता है। कोरन देकर के दो दिन धूप लगने के लिए छोड़ देने से वो जितना घास निकलता है जड़ से वो मर जाता है। उसके बाद फिर हम लोग पास उसमें चढ़ाते हैं
0: जी। तो मिर्च में ये पहली कुड़ाई हो गई, और फिर और
1: उसमें बस कोई कोड़न नहीं देना पड़ता है, सिर्फ पानी। अगर बारिश नहीं हुई तो पानी डालना पड़ता है दो दिन चार दिन पर, इसलिए कि मिर्च में ज्यादा पानी डालने से ना भी पत्ता भी कुकड़ने लगता है, खराब हो जाता, फिर फल भंगवा जाता है, फिर वो फल नहीं पकड़ेगा। अच्छा
0: बिल्कुल। तो अगर पत्तियां उस तरह की भंगवा गई है, मुड़ मुड़ गई है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं?
1: उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें यही कीजिए कि नीम पत्ता, रखवन पत्ता और सदाबहार, लाल मिर्च, लहसुन सब उबाल करके अच्छे से एकदम उबाल दीजिए, उसको सिझा करके छान करके वही वाला पानी छिड़काव कीजिए आप
0: जी। मतलब इससे है कि नुकसान भी नहीं होगा और फायदा होता है।
1: नीम का पानी अगर नहीं बनाने का टाइम मिला आपको तो नीम ऑयल मिलता है मार्केट में
0: जी जी,
1: उसको एक लीटर पानी में दो ढक्कन मिला करके और उसी को छिड़काव कीजिए
0: जी।
1: वही करते हैं हम लोग, तो उससे कि कीड़ा लगता नहीं है और फायदा भी होता है
0: जी। बिल्कुल, इससे तो ये एक जैविक तरीका है और इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं कि हम लोग को जो है पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए काम करना चाहिए।
1: सप्ताह में हम लोग एक बार डालते हैं उसमें, ताकि कीड़ा नहीं लगता है और फल भी अच्छा पकड़ता है। नहीं तो मिर्च में भी देखिएगा, मिर्च फल पकड़ेगा तो टेढ़ा होने लगता है, कीड़ा पकड़ लेता है और व्हाइट व्हाइट कीड़ा रहता है, व्हाइट कीड़ा बहुत खतरनाक होता है, वो पेड़ के ही सुखा देता है।
0: व्हाइट और पत्तियां भी जैसे कि मुड़ मुड़ जाती है तो मिर्च का पौधा खराब
1: हो जाता है। इसलिए 15 दिन में या सप्ताह में आप धूप के समय डालिए उसको
0: जी जी,
1: ताकि पानी ना पड़े। धूप में डाल दीजिए, सुबह के समय डाल दीजिए, दिन भर धूप लगेगा, कम से कम एक दिन धूप लग जाए तो फिर वो सही हो जाता है और फल भी अच्छा देता है
0: जी। बिल्कुल। और मिर्च ज्यादा तीखा हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग जैसे बाजार में जाते हैं ना तो देखते हैं कि बहुत सारा मिर्च बड़ा बड़ा तो होता है लेकिन तीखा नहीं होता है।
1: तो मिर्च तीखा करने के लिए जैसे अभी बरसात का समय है, तो बरसात के समय तो ऊपर से पानी पड़ता है
0: जी,
1: तो मिर्चा में जितना पानी फल, जैसे कि जब तक वो फल फूल नहीं पकड़ता है तब तक पानी कम डालना है
0: जी जी।
1: फल पकड़ने लगता है जब फल बड़ा बड़ा होने लगता है तो पानी उसमें भरपूर देना पड़ता है, ताकि पानी ही से वो मिर्च तीता होता है
0: जी।
1: ऐसे गर्मी के दिन का मिर्च में तीतापन झालपन नहीं रहता है
0: जी।
1: अब बरसात का मिर्च में देखिए बहुत तीता होता है।
0: बिल्कुल। जैसे कि आप मिर्च लगाए हैं और इसमें ज्यादा मुनाफा हो, लोग देखकर ही खरीदे, तो सही तोड़ने का तरीका क्या होता है? क्योंकि हम लोग मार्केट जाते हैं तो बड़े मिर्च के साथ बहुत सारे छोटे छोटे मिर्च भी टूटे हुए रहते हैं जो कि बिना काम के हो जाते हैं, तो इसमें किस समय तोड़ते हैं मिर्च को ताकि उसका अच्छा कीमत मिले?
1: मिर्च जब बहुत अच्छे से फल जाता है, जब पूरा तैयार हो जाता है, अंदर में दाना बीज भर जाता है, देखिए कि कड़ापन हो जाता है उसमें, हल्का लालपन आने लगता है जैसे, तो वो मिर्च तैयार हो जाता है, तो वो मिर्च चुन चुन को तोड़ना पड़ता है ताकि नीचे का छोटा फल ना टूटे, वो मिर्च अच्छा मुनाफा देता है।
0: और जैसे कि देख रहे कि कुछ कुछ मिर्च जो है वो लाल भी हो गया है, पक गया है, तो इन मिर्च को फिर क्या करते हैं?
1: वो मिर्च को लोग सुखाते हैं, तोड़ करके धूप में, अच्छे धूप में सुखाते हैं, धूप लेकिन उसमें अच्छा लगना चाहिए
0: जी।
1: और नहीं तो धूप नहीं लगेगा तो व्हाइट हो जाएगा, काला हो जाएगा, फंगस लग जाता है, इसलिए उसको धूप लगना ही अच्छा है। धूप लगेगा तो बहुत अच्छा रेड बनेगा, एकदम लाल बनेगा
0: जी।
1: उसको या तो आप दुकान में बेच दीजिए या तो फिर घर में आप कूट करके लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन लाल मिर्च से अच्छा ज्यादा ही हम लोग हरे ही मिर्च का इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल। लाल मिर्च, हाँ लाल मिर्च तो लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो फोरन वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो हरी मिर्च इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि भाई आप मिर्च की खेती किस तरह से करते हैं, अपने अनुभव को हमारे किसान भाइयों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा अभी हम इनके अपन अनुभव के साझा करे थलते हलथिन साजिदा खातून और इनकर से बातचीत कर लेती नामता परवीन।
0: तब देख ला कि यही जानकारी के साथ अब कार्यक्रम से विदा लिए के बेरा भी हो गए है, तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमरा नामता के
2: और उमेश के अनुमति दा
0: जोहार।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले इन सभी ग्रामीण भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है और साथ है नहमता बहन देने से जोहार
1: और उमेश भाई के देने से भी जोहार प्रणाम। और देखा आज हम इन कार्यक्रम में फिर से एक बार बनल है और देखा कि बातचीत करवे हम इनके जुलाई महीना चल रहा है एकर में हम इनके जो है का का काम करे के है और देखा कि एक अबधर जो हम इनके अब बरसात के मौसम आ गए हो तो देखा कि फलदार पौधा भी जो है से लगावे के बेस्ट समय है
0: एकदम। और अबधर जो पौधा लगो है एकर लेल हम इनके जो है गड्ढा खोद के तुरंत लगावे के नहीं चाहिए, एकर तैयारी हम इनके पहले से करे के चाहिए।
1: देखा कि कम से कम डेढ़ से दो जो है
0: एक से डेढ़ महीना पहले हम इनके गड्ढा खोद के जरूर रखे के चाहिए।
1: ओकर में देखा कि पता है जो हो गलो चाहे गोबर ये सब जो है अगर तू डाल के छोड़ दा तो वहाँ के जो माटी है से बेस्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए
0: एकदम। और हम इनके गड्ढा खोदे के कारण भी है कि जैसे कि हम इन गर्मी में गहरा जुताई करो ही है कि ये अंदर के जो कीट रहो है तो वो मर जा है, घास पात मर जा है, तो वैसे फल बाग के भी तैयारी पहले से कर पड़ो है कि मतलब अबधर जैसे जुलाई महीना में हम इनके फल लगावे के है तो एकर से एक डेढ़ महीना पहले हम इनके गड्ढा पूरा खोद के और मिट्टी बाहर की ओर करके हम इनके छोड़ दिए, क्योंकि वो गड्ढा में जब पूरा कड़ा रौद लगो है तो अंदर के जितना भी कीट फंगस कुछ भी हो तो सब खत्म हो जाए।
1: खत्म हो जाए बिल्कुल।
0: और अब के समय में क्या है कि जब बाहर में मिट्टी बाहर में जब मिट्टी रहो है तो वो अब हमीन का है ओकर में गोबर और जो खाद है सब मिला के और हमीन फल के जो पेड़ है वो लगा सको ही है।
1: बिल्कुल। और देखवा कि जो है जब हम इनके बारिश शुरू है तो एकर में तुहिन जो है से कोई भी गाछ लगवा भाई, देखा जैसे नींबू हो गलो तो आम हो गलो लीची हो गलो शरीफा हो गलो जो है कोई भी तो अगर फलदार पौधा के लगावा तो देखा कि ओकरा जो है ज्यादा ज्यादा लगे के संभावना है
0: एकदम।
1: दूसरा बात है देखा कि हम इनके गांव में जो है अब देखवा के कोनार के गाछ लगवा थे भाई, मुनगा के गाछ लगवा थे, मुनगा के देखवा के ओकर डांड के काट के और पानी जगह रख देती अब नेजिक जाहिर ओकर बाद देखा कि अभी जो है से ओकरा लगवा थे तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके अभी जो है ओकरा लगा के और ओकरा बढ़िया से देखभाल भी करना बहुत जरूरी हो जाए
0: एकदम। तब देखला कार्यक्रम में हमें नागो भी बनल रहे हैं, अब धर सुना हुए है एगो गीत और साथ है जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कठुआ के नैया बनी है मलहवा, नदिया के पार दे उतार।
1: चपक चपक चले ओ चपक चपक।

0: तो ये गीतनाद के और जरूरी संदेश के बाद हम इन फिर से एक बार हाजिर है कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब तो देखा कि बरसात शुरू हो गए है और ऐसन में का है कि हम इनके जो भी फसल लगल है उकर पर भी ध्यान दिए के है, गोरु डांगर पर भी ध्यान दिए के है। अब फसल जो लगल है तो कर में ये ध्यान दिए के बाद जेकरा में पानी के जरूरत है वो तो ठीक है
1: बिल्कुल,
0: और जेकर में पानी की जरूरत नहीं है तो भाई उकर में भी अगर ज्यादा पानी पड़ जाए तो दिक्कत है। तो हम इनके ऐसा नहीं पानी निकासी की व्यवस्था जरूर रखे के
1: देखा
0: चाहिए।
1: अभी तो एकदम बेस बात कहला कि देखा हम इनके बहुत किसान भाई बहन जो है मकई लगा देती है, बहुत किसान भाई बहन हथिन की भाई बिलौती लगे लेन, मरचाई लगे लेन भाई, फूलगोभी लगा देती है। तो देखवा नहीं की जो बारिश झारे में जो पानी जल जमा हो जा रहा है तो ओकरा हम जो है बेस तरीके से निकासी कर दा, नहीं तो फिर देखबा कि जो है तोहर जे भी तू साग सब्जी लगेले हा वो जो है से गले लगतो और जो है से वो फिर नुकसान हो जाते।
0: एकदम सही कहला। तो इधर से हम इन है कि मैं देख सकू है कि बरसात है तो एकर में भी हम इनके एकदम निश्चिंत न हो जाए के कि पानी तो पड़ले है, पानी निकासी का व्यवस्था रखे के है। साथ में है कि जितना पानी पड़ो है माटी में नमी हो उतना ही ज्यादा खरपतवार भी निकलो है।
1: बिल्कुल देखवा कि अभी का है कि कीड़ा मकोड़ा भी तोरा जैसे ज्यादा लगा रोग व्याधि ज्यादा लग जाती,
0: तो एकदम समय समय पर जो हम इनके है कि कीटनाशी का छिड़काव करते रहे के है। कीटनाशी मतलब रासायनिक कीटनाशी से दूर रहे के है, जैविक कीटनाशी जैसे कि नीम तेल जाओ है ओकरा हम इन छिड़काव कर सको ही है। या फिर हम इनके आसपास जे कि हम इन जीरो बजट में ओकरा हम इन बना सको ही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि तो नीम के पत्ते हो गए, अकवन के पत्ते है, सिंधवार के पत्ते हो गए, सदाबहार है, कनेल के पत्ते, मतलब जे कि छगरी पटरू जानवर न खाते, तो ऐसा

0: लहसुन पत्ते हमीन लेके साथ में ओकर में जे लहसुन हमीन के हवा लग जाए या तनी खराब हो जाए ओकरा कुछ काज के पूरा डाल दिए के
1: बिल्कुल देखा के एकर में का है कि जैसे है कि नीम के खली हो गलो करोन के खली देखा कि तू चूना के भी जो है से ओकर में मदद ले सकता
0: है। एकदम वो तो खली हमीन के माटी में जैसे मिलावे के एकरा का हमीन जितना पत्ता है साथ में जे लहसुन हो गल लाल मिर्च हो गल जैसे टुकड़ा टुकड़ी रह जाए सब हमीन के झाड़ झूड़ के डाल दिए के तनी अदरक डाल दिए के मतलब और ओकरा खोला के है पूरा खोला के पानी आधा कर दिए के और ओकरा सूती कपड़ा से छान के हम इनके रख लिए के है और फिर ओकरा हम इनके जब छिड़काव करे के जब जब तो सप्ताह में अगर एक बार हम इन अपन पौधा में छिड़काव करिए ना तो कोई तरह के नुकसान नहीं है लेकिन इससे फायदा होता है
1: बिल्कुल
0: और पानी में मिला के ओकरा छिड़काव करे
1: के पानी में जो है ओकरा एक मात्रा से जो है पानी से मिला के छिड़काव करना है और हम इनके ये भी सावधानी रखना है कि देखा जो भी कीड़ा मकोड़ा चाहे फिर रोग व्याधि लगल है तो हम इनके जो है इस समय के ध्यान रखना है कि हम इनके जब छिड़काव करे के ओकर से जो है 2 घंटा तक बारिश ना हुए
0: एकदम
1: अगर तो बारिश हो जाए तो तुम्हारा जो है से फिर
0: वो सब धूल जाता
1: और ओकर से जो है तुम्हारा जो साग सब्जी में जो दवा देना हो वो तुम्हारा फायदा कम होता है। तो ये खातिर ले का है कि भाई हम इनके ध्यान देना है और देखा कि अभी जो किसान भाई बहन फूल गोभी लगे लेते बहुत किसान भाई बहन तो कि मरचाई के जो है नर्सरी के भी तैयारी कर लेते तो एक पर आज हम एगो जो है भेंट वार्ता भी लेके ले ही है और ये बातचीत करे थे ये बताए थे राकेश कुमार और उनकर से बातचीत कर लेते उमेश तो देखा कि वो अपन अनुभव के बताए थे
0: एकदम तो सुनल जा पहले इनकर बातचीत।
2: किसान भाइयों हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में ऐसे सफल किसान आपको मुलाकात करवाते हैं और बातचीत कराते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं कटकमदाग जहां एक सफल किसान है और ये किन किन फसलों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
3: मेरा नाम राकेश कुमार हुआ।
2: हाँ
3: ग्राम कटकमदाग सुल्ताना जिला हजारीबाग।
2: तो राकेश जी अभी आप जो है अपने जमीन में क्या क्या लगाए हुए हैं और क्या क्या लगाने की तैयारी कर रहे हैं?
3: अभी तो हम गोभी लगाए हुए हैं और मिर्चा के गाछी छोड़े हुए हैं।
2: अच्छा
3: उसमें खेत तैयारी है वर्षा का इंतजार हो रहा है वर्षा पानी बरसेगा उसके बाद फिर मिर्चा लगाएंगे अभी गाछी तैयार हो रहा है।
2: तो हम जानना चाहेंगे कि मिर्चा के गाछी जो है आप कौन सा कंपनी का जो है कर रहे हैं?
3: अंकुर कंपनी का गाछ।
2: अच्छा आप अंकुर कंपनी का लगाए हो तो जैसे आप बीज को लाते हैं उसके बाद जो है सो नर्सरी तैयार करते हैं सेट बना।
3: हाँ बीज को लाकर वो हम तो आप तो जैसे होता है क्या बोलते हैं उसका प्लास्टिक वाला करने के लिए आता है खान खान वाला तो वो तो अभी हम नहीं किए हम तो ऐसी मिट्टी को खोद कर उसमें खाद डाल के उसका बराबर करके और एक एक दाना गिरा के हम ऐसा ही किए हैं।
2: अच्छा
3: और अभी तो अक्सर आदमी प्लास्टिक और मिर्ची करता है लेकिन हम ऐसे बिछा दिए जमीने पर और गाछी मेरा अभी तैयार एक उंगली का मिर्ची हो गया है।
2: अच्छा,
3: और कोबी रोप दिए जिसमें अभी चाल कर उसका पास दे रहे हैं।
2: अच्छा तो जो कोबी आप कह रहे हैं कि हम रोप दिए हैं तो जब कोबी का जो है बीज आप लाते हैं तो उसको जो है सो क्या करते हैं? पहले नर्सरी तैयार करते हैं अंकुर होता है उसके बाद रोपाई करते हैं कि सीधा रोपाई करते हैं?
3: नहीं नहीं उसको बीजा पहले तैयार करके उसका बाद रोपाई करते
2: हैं। अच्छा तो जब आप बीजा तैयार करते हैं तो उस समय क्या क्या तैयारी करते हैं आप क्या क्या आपको काम करना पड़ता है?
3: बीजा तैयारी के लिए जमीन को खोद के पहले उसको बराबर कर मतलब छोड़ देना पड़ता है सेल बनाने की उसमें धूप ऊप लगता है तो कीड़ा उड़ा मर जाता है। उसका उसमें खाद एगो आता है रेड कलर का आता है उसको डाल के उसमें फिर गोबर वाला पुराना गोबर डाल देते हैं फिर DAP डाल देते हैं उसको फिर बराबर मिला उला के उसका बाद उसको बराबर करके और खींच के उसे उंगली से खींचते मतलब इससे क्या बोलते हैं डंडा रस दतुन टाइप के से और उसमें एक एक दाना हाथ से गिरा के उसमें ऊपर से फिर खाद देके उसको ढक देते हैं।
2: अच्छा तो फिर ये अंकुर कितने दिन में हो जाता है?
3: अंकुर 3-4 दिन में हो जाता है उसका बाद फिर ढकने के बाद उसको उघाड़ देते हैं अंकुर देखते हैं कि आ गया तो उसको फिर हटा देते हैं
2: उसको बड़ी सावधानी से हटाते हैं क्योंकि अंकुर जब हो जाएगा तो उसमें फंस जाएगा तो कबड़
3: जाएगा
2: तो पानी भी पटाना पड़ता है क्योंकि सूख जाएगा तो मर जाएगा।
3: उसमें ऐसे मशीन से पानी दिया जाता है क्योंकि अगर आप डोंग या पांच या किसी से भीजेगा तो वो कबड़ जाएगा या कोड़ा जाएगा, तो उसको छिड़काव करना पड़ता है मशीन से, क्योंकि उसमें उस समय पूरा जड़ नहीं रहता है। अच्छा। और आप किसी वस्तु या किसी से दे दीजिएगा तो वो कबड़ जाएगा या बह जाएगा। अच्छा। तो हम छिड़काव से, जैसे मशीन से छिड़काव से देते हैं।
2: तो गोभी आप लगाए हुए हैं।

0: क्या स्थिति है अभी आप?
1: अभी गोभी मेरा बढ़िया है, वो अच्छा मतलब फसल लग रहा है, पूरा बराबर है, हरा भरा है, और अभी हम चाल रहे हैं।
0: अच्छा, यानी कि अभी आप कोड़ाई कर दिए हैं, उसको चलाई कर रहे हैं, उसके बाद उसका मिट्टी चढ़ाएंगे, खादी करेंगे?
1: हाँ, मिट्टी चढ़ाएंगे, उसमें डीएपी और पासपोर्ट दोनों मिला के, यूरिया सब मिला के देंगे।
0: अच्छा, तो जैसे आप अभी कितना कट्ठा में गोभी का खेती कर रहे हैं?
1: अभी नहीं है, 3-4 कट्ठा लगाए।
0: अच्छा, 4 कट्ठा लगभग आप लगाए हुए हैं, तो अभी जो है आप पास चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है कितना दिन में तैयार हो जाएगा आपका गोभी?
1: अभी उसमें 5 चढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें फिर दवा डालेंगे, कीटनाशक डालेंगे।
0: अच्छा, कीड़ा मकोड़ा जो लग जाता है?
1: हाँ, उसमें कीटनाशक दो तरह के देंगे, कीड़ा मोड़ने वाला, हरियर होने वाला।
0: अच्छा,
1: तो उसमें जैसे आता है, हम लोग जैसे बोलते हैं क्या कि टॉनिक टाइप के, उसमें भी आता है, उसमें डालेंगे तो हरा भरा रहेगा, अब जल्दी तैयार होगा।
0: अच्छा, जैसे आप दवाई छिड़काव करते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानी रखते हैं? अक्सर क्या होता है कि कुछ किसान होते हैं, दवाई का डब्बा या पैकेट जहां तहां फेंक दिए, बच्चा चट गया या कोई जानवर चट गया तो नुकसान होता है, तो इसके लिए क्या उपाय करते हैं?
1: उसके लिए अभी जैसे हम अपना जैसे डब्बा दवाई का अगर खत्म हो गया तो वो प्लास्टिक में रख के उसको साइड एरिया में या दूर में गड्ढा खोल के उस पर डाल देते हैं।
0: बिल्कुल सही काम,
1: इधर उधर रहेगा तो कोई भी बच्चा या कोई जानवर एक जीव जंतु चाट लेगा तो उससे नुकसान
0: होगा। और एक बात और है कि जैसे क्या मात्रा मिलाते हैं दवा का और पानी का?
1: जैसे उसमें ml रहता है दवाई का, जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, 5 ml, 2 ml, 8 ml, उस तरह रहता है। तो बीज दुकान में आप पूछिएगा कि हमको ये दवाई इसमें देना है, तो वो बता देगा कि 5 लीटर पानी में 5 ml देना, 4 ml देना। अच्छा, उस हिसाब से हम डालते हैं।
0: अच्छा, जैसे दवा छिड़काव करते हैं उसमें
1: मुंह वो ग्लव्स से बांध के या मुंह ढक के करना चाहिए, वो उसमें ना कीटनाशकों से जो रहता है उसमें पूरा खुजली टाइप का शरीर होने लगेगा,
0: अगर नहीं पड़ने से।
1: हाँ, इसलिए मुंह है शरीर पूरा कपड़ा पहन के बढ़िया वाला और मुंह ढक के छिड़काव करना चाहिए।
0: अच्छा, अभी जो गोभी आप लगाए हुए, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों है या फिर फूल?
1: नहीं, अभी फूल गोभी।
0: फूल गोभी है। अब आते हैं जो है, अब कुछ दिन में जो है आपका बिक्री करने लायक भी हो जाएगा, तो हम एक बात और जानना चाहेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि मिर्चा का हम नर्सरी भी किए हुए हैं, क्या स्थिति है उसका?
1: मिर्चा का नर्सरी ठीक है, अभी बीजा ठीक जलमा है और अभी छोटा छोटा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो वर्षा होगा उसके बाद फिर उसको लगाएंगे।
0: कितना दिन में वो तैयार हो जाएगा रोपाई करने लायक?
1: वो 15 दिन में तैयार हो जाएगा, 10-15 दिन में।
0: तो जहाँ आप रोपाई करेंगे वहाँ की तैयारी कैसे कर रहे हैं?
1: वहाँ अभी जोत के छोड़ दिए हैं, घास उस मर रहा है। अच्छा। उसमें धूप लग रहा है, कीड़ा मकोड़ा मर रहा है, तो उसमें गोबर डालेंगे और चूना डालेंगे उसमें कि जड़ में कीड़ा नहीं लगे।
0: हाँ।
1: उसका उसको सब मिक्स करके गाड़ी से जुता के उसके बाद फिर
0: अच्छा
1: वर्षा होगा उसके बाद मिर्चा।
0: तो मिर्चा कितना कट्ठा में आप लगाने वाले हैं?
1: अभी मिर्चा वहाँ 5 कट्ठा है।
0: मिर्चा 5 कट्ठा में लगाएंगे,
1: उसका
0: तो उसके बाद जो है सो पानी पटवन करेंगे, देखभाल करेंगे।
1: उसके बाद पानी पटवन जब लगाएंगे उसको लग जाएगा, उसके बाद फिर खुदाई होगा, फिर उसमें खाद उद डलाएगा।
0: अच्छा,
1: बाद
0: तो फूल झड़ने लगता है और सब क्या क्या बीमारी आता है
1: उसमें होता है कि देखिए कीड़ा लग जाता है, वो जड़ साथ कीड़ा लग जाएगा, काट के गिरा देगा या अंदर अंदर जड़ जाएगा, उसके लिए कीटनाशक देना पड़ता है। उसका फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फूल नहीं आता, उसके लिए कीटनाशक झड़ने लगा, उसके लिए कीटनाशक का दवाई।
0: अच्छा अच्छा, यानी कि उसका लक्षण देखते हैं।
1: हाँ, उसके हिसाब से उसको दवाई देना पड़ता है।
0: तो राकेश कुमार जी, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत दिन से आपका अनुभव है, जो आपकी बात को सुन रहे हैं जो किसान भाई हैं, जो काफी दिनों से जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनको एक संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे खेती बाड़ी करें? बहुत किसान है कि बाहर चले जाते हैं अपना जमीन छोड़ के, बहुत हैं कि मजदूरी करते हैं लेकिन अपना घर में जमीन है, सब्जी खरीद के खाते हैं और लेकिन अपना घर में खेती नहीं करेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, जैसे देखिए बुजुर्गों ने कहावत किया है कि करना है तो बाप के खेती कीजिए ना फिर सरकार का नौकरी, ऐसा कहावत है पहले। देखिए खेती में भी बहुत पैसा है, अभी मेरे गाँव में खेती कर करके कहाँ कहाँ आदमी पहुँच गया। अगर किसी को जगह जमीन अच्छा है और ज्यादा लंबा चौड़ा मार खेती में मन लगता है तो खेती करना चाहिए, क्योंकि खेती में भी बहुत पैसा है। आप बाहर जाइएगा आपको 10,000-20,000 एक महीना महीना लगेगा तब मिलेगा, काम कीजिए कहीं ऑफिस या कोई भी फैक्ट्री में, लेकिन आप अगर यहाँ 2-3 महीना में लाखों 2 लाख दे सकते हैं खेती करने से।
0: तो राकेश कुमार जी हमारे कार्यक्रम में आए, इतना बहुमूल्य समय दिए, इतना बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देख ला, ये हल्थिन राकेश कुमार जी की फूलगोभी के खेती और मिर्च के नर्सरी के बारे में बतेलथिन।
0: हाँ हाँ,
2: और इनका से

0: बातचीत करते हैं करत हलथिन उमेश रजक।
1: तो देखा कि कितना बेस बात बतलथिन कि भाई देखा कि फूलगोभी के खेती कर लेथिन और मरचाई के नर्सरी करके जो है से ओकरा रोपाई के भी तैयारी कर लेथिन भाई। तो कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके किसान भाई बहन जितनी से खेती बाड़ी में लगल रहो थी और वो कोशिश करो थी कि भाई देखा जिनकर जमीन ना है तो वो का करो थी कि भाई लीज के जमीन भी ले करके जो है बढ़िया से व्यवसायिक खेती करो थी ताकि अधिक से अधिक जो है से पैदावार ले सको थी और मुनाफा भी कमा सको थी।
0: एकदम सही कला। और हमीन जैसे कि अब बात करबे के बाद बारिश के समय है, बरसात शुरू हो गए है।
1: हाँ।
0: तो इस समय में हमीन पहले बात कर लिए कि भाई अपन जे खेत में लगल है फसल
1: हाँ।
0: ओकर कैसे ध्यान रखे के है और अब समय की जे जानवर है हमीन के पास
1: हाँ।
0: उखिन के देख रेख कैसे करिए, खास करके दुधारू पशु जे है, काहे कि अगर हम इन दुधारू पशु के सही से देख रेख न करबे तो हम इनके जो है अपन व्यवसाय में नुकसान हाँ। हो सको है।
1: बिल्कुल देखा कि जो है बरसात के मौसम में अगर जो है दुधारू पशु अगर भींग गेल थुन चाहे बाहरे रह गेल थुन चाहे फिर खान पान में अगर हम इन थोड़ा सा भी ढिलाई करवा तो देखबा कि तोरा जो है से दूध पर जो है प्रभाव पड़ जाए
0: एकदम।
1: और कहीं न कहीं देखा जे गाय रख लेथिन जे हम इनके पशुपालक भाई थी तो देखा कि दूध पर जे निर्भर हथिन भाई दही पर निर्भर हथिन जो है से उनका घी पर निर्भर हथी तो कहीं न कहीं उनका जो है से खान पान में विशेष सावधानी रखे पर तो और देखा जे पानी पर वो पियावे के है ओकरो में हम इनके जो है से विशेष ध्यान रखना है ताकि जो है हम इनके दूध पर जो है कोई तरह से असर न हो नुकसान
0: एकदम। मतलब पानी हम इनके दिए के है पियले तो ताजा पानी ही दिए के है
1: हाँ।
0: कि बरसात के समय भाई अगर जमल पानी हम इन रख दिलिए और फिर सोचे कि भाई ओकरे जानवर पी ले लेते
1: हाँ।
0: तो वो सही नहीं है
1: बिल्कुल।
0: बासी जो चारा बासी खाना ओकर वो भी नहीं दिए के
1: हाँ।
0: है हम इनके जो भी चीज दिए के है खाए पिए ले ताजा दिए के है
1: बिल्कुल।
0: और हरा घास अबधर थोड़ा ज्यादा मिलते
1: हाँ हाँ।
0: तो लेकिन वो काट के ला के आ थोड़े थोड़े दिए के है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा दे दिए से कहा है कि पेट खराब हो जाए
1: हाँ हाँ।
0: और ओकर बाद का है कि साफ सफाई के पूरा ध्यान रखे के है
1: बिल्कुल। देखा कि जहाँ तू जो है अपन गाय के चाहे बैल के चाहे काड़ा भैंस जे भी तोहर जगह पशु है जो है ओकरा जो है से हम इनके बरसात के मौसम में जहाँ हम इन रखो ये भाई तो वहाँ के जो है साफ सफाई रखना है ताकि जो है से कई तरह के देखवा कि बर बीमारी भी हो जाए। देखा कि अभी जो है खुरपका रोग हो जाए चाहे गला घोटू रोग हो जाए चाहे सर्रा रोग हो जाए तो देखा कि कई तरह के जो है बारिश में तोहरा जो है से बीमारी देखे ले मिलतो और हम इनके देखा कि ये कोशिश करे के चाहिए कि घरेलू उपचार भी हम जो है से कर सको ये ताकि जब तक हम जो है से डॉक्टर के बुलाइए तब तक हम इन अपन जो है पशु के घरेलू उपचार से देखभाल करिए ताकि जो है से कोई बड़ बीमारी आवे से जो है बचावल जा सको है।
0: एकदम सही कला कि हम इनके घरेलू उपचार भी हमेशा करे के चाहिए और हाँ। साफ सफाई तो हमेशा हम इनके ध्यान रखे के है
1: बिल्कुल।
0: कि रखे वाला जगह जो है गुहाल मतलब जहाँ बाहर हम इन दिन के बांध हुई है वो भी सुखल रहे के चाहिए और गुहाल जो रात में बांध हुई है वो भी सुखल रहे के चाहिए
1: बिल्कुल।
0: और रबड़ के जो एक मैट आओ है वो हम इनके जरूर अपन गुहाल में बिछा के रखे के चाहिए ताकि जानवर के उठे बैठे में दिक्कत ना हो ठंडा
1: हाँ।
0: नहीं लगे
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा चीज है कि जो घुटना में जो छिला जाए है
1: हाँ।
0: जख्म हो जाए है वो न हो और ओकर खुर के रोजाना हम इनके
1: साफ
0: करे के चाहिए कोई पतला चीज से जो बीच में गंदगी जम जाए है
1: हाँ।
0: उकरा साफ करके डिटॉल पानी से रोजाना धोए के चाहिए काहे कि एक बचाव ही हम
1: हाँ।
0: इनके बीमारी से मतलब लड़े के अरे उकर से बचे के सही है मतलब हम इनके उपाय पहले करे के है
1: बिल्कुल। एक बात और है देखा कि अगर जो है जहाँ तो अपन गाय के रख ले हा तो वहाँ अगर आसपास में अगर भींगल हो पानी जमल हो तो भाई ओकर में कहे कि हम इनके ब्लीचिंग पाउडर चाहे चूना ये सब जो है डाले के चाहिए ताकि जो है वहाँ मच्छर ना पनपे
0: एकदम।
1: कहे कि देखबा कि बरसात के मौसम में जहाँ पानी जमल हो तोरा देखा कि मच्छर जो है से पनप जे तो कई तरह के जो है से वहाँ जे दुर्गंध है तो ओकर से भी जे हम इनके गाय पर परेशानी हो तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके छोट छोट बात के अगर देखभाल करे के है बढ़िया से अगर हम इन अनदेखा ना करिए तो हम इन अपन जो है चीज वसूद के बेस तरीके से रख सको ही है।
0: एकदम सही कहला। और अब देखला कि कार्यक्रम से जाए के बेरा हम इनके हो गए है
1: हाँ हाँ।
0: तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमरा नाम तक
1: और उमेश के अनुमति दा
0: जोहार।

खेती बारी सुन रहे थे आप सभी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ दो टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ श्रद्धा करकेट्टा के नेतृत्व में गठित पुलिस की छापेमारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ चल रही है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युव वाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुन रहे सभी युवा श्रोताओं को आपके दोस्त माणिक चक्रवर्ती का नमस्कार, जोहार, शुभ संध्या। बारिशों का मौसम आ चुका है। अब युवा श्रोताओं को और हमारे युवा साथियों को बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो मोहल्ले से लेकर समाज तक में नजर आते हैं। जी हाँ, गड्ढों से सभी को बचाना, पानी की निकासी के लिए बहुत सारे कार्य करना और अपने दैनिक जीवन के कार्य तो हैं ही। ऐसे में आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और अपने दोस्त माणिक के साथ युववाणी सुनना शुरू कर चुके हैं आप सभी। शाम का समय है तो ऐसे में बहुत सारे इसके अंदर अभी हमारे पास चीजें हैं जो आपको बतानी है, आपके सामने लानी है, लेकिन उससे पहले एक गाना गुनगुना लिया जाए यारों।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: युवा श्रोताओं, आज गीत के बाद अब मैं माणिक चक्रवर्ती आपको आज के चर्चा का विषय बता देता हूं। युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर, ये है आज के हमारा चर्चा का विषय। साथियों, आज का भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। यदि हमारे युवा शिक्षित होने के साथ साथ कुशल भी होंगे तो भारत की प्रगति और तेज होगी ना। आज केवल डिग्री काफी नहीं है श्रोताओं। साथियों, कंपनियां ऐसे युवाओं की तलाश कर रही हैं जिनमें काम करने की क्षमता, नई तकनीक सीखने की इच्छा, टीम के साथ काम करने की आदत और समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता हो। युवा दोस्तों, आज जिन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आज AI के नाम से जान रहे हैं, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन, और साथ में सौर ऊर्जा, हेल्थ केयर, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा प्रमुख है। झारखंड के युवाओं के लिए भी अवसरों की कमी नहीं है युवा साथियों। हमारा राज्य खनिज संपदा, कृषि, वन संपदा और पर्यटन से समृद्ध है। यदि युवा आधुनिक तकनीक के साथ इन क्षेत्रों में आगे बढ़ें तो स्वरोजगार के अनेक रास्ते खुल सकते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, आप भी जानते होंगे, जैसे मशरूम का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी और बकरी पालन, साथ में लाख और तसर जैसे आधारित उद्योग, फल और सब्जी की प्रसंस्करण का उद्योग, डिजिटल सेवा केंद्र, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, यूट्यूब पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट निर्माण इत्यादि। साथ में स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री भी। आज सरकार भी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रही है। युवा साथियों, प्रशिक्षण संस्थानों, ITI, पॉलिटेक्निक, कौशल विकास केंद्रों तथा मैं कहता हूं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवा अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो उसके साथ साथ कई ऐसे अतिरिक्त कौशल भी जो है वो अवश्य सीखिए। यदि नौकरी मिलने में समय लग रहा हो तो यही कौशल आपकी आय का साधन बन जाता है। आज हर युवा को कुछ डिजिटल कौशल अवश्य आने चाहिए। ईमेल लिखना, ऑनलाइन आवेदन करना, डिजिटल भुगतान करना, वीडियो मीटिंग करना, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना, सोशल मीडिया का सकारात्मक और पेशेवर उपयोग जानना, इनके साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में प्रभावी संवाद, समय का सदुपयोग, अनुशासन और आत्मविश्वास भी सफलता की कुंजी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कह दूं कि असफलता से कभी मत घबराइए। हर सफल उद्यमी ने कभी न कभी चुनौतियों का सामना जरूर किया है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो याद रखिए, कौशल वह पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन का रास्ता दिखाता है, और जीवन भर जब रास्ता दिखाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है।

0: आज हजारीबाग और झारखंड के सभी युवा साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानिए, नई तकनीकों को अपनाइए, अपने कौशल को और निखारिए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अंत में महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक प्रेरक विचार याद आ रहा है, आप सबसे शेयर करूं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब आइए आपको एक भेंटवार्ता सुनवाता हूं, फिर हम इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। भेंटवार्ता का विषय है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय की उपयोगिता। भेंटवार्ताकार हैं गिरीश कुमार और इनसे हम सबके लिए बातचीत किया अशोक कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जिला प्लस टू विद्यालय के गणित विषय के शिक्षक गिरीश कुमार जी को। गिरीश कुमार जी, एक लंबे समय अंतराल के बाद अब आकाशवाणी के कार्यक्रम से मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ नमस्कार।
2: थैंक यू, नमस्कार।
1: गिरीश जी, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, गणित विषय का अपना एक बहुत महत्व है और एक यह है एक ऐसा विषय है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है कि डर का एक माहौल रहता है कि वो शुरू में ही लेके चलते हैं कि गणित विषय जो है बहुत फास्ट है, बहुत हार्ड है सब्जेक्ट जो है, इसमें अधिक अंक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक मिथ्या लोगों के मन में जो है सो दिमाग में पहले से ही ये भरा रहता है, इसलिए वो गणित विषय से डर जाते हैं और जब डर जाते हैं उससे तो फिर उससे दूर भागते हैं। मेरा ख्याल है कि बेसिक चीज़ को लेकर फक चला जाए तो गणित विषय बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इससे अगर बेस अगर मजबूत हो तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुभारंभ किया जाए कि ये पहला जो मेरा प्रश्न होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय क्या स्थान रखता है।
2: जी, मैं पहले आपको बता दूँ सर कि गणित विषय जो है सो बिल्कुल ही कठिन नहीं है। अगर उसको सही मायने में आप शुरू से स्टार्टिंग से अगर कंसेप्चुअल वे में आप उसको लें, आप एक चीज़ हम मैं बताना चाहता हूँ सारे लोगों को कि गणित विषय को जो धारणा ये बनी हुई है कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड, हाँ है, लेकिन अगर उसका रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ते हैं, तो चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। जैसे अभी अभी जो है सो हम अगर हम खुद पढ़े हुए हैं मुगल काल के शासकों के बारे में, लेकिन अगर अभी हम देखें कि बाबर का जन्म कब हुआ था, वो कब आक्रमण किया, क्या किया, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं।
1: सही।
2: लेकिन देखिए, अब अगर हम मैथ्स की बात हम अगर करते हैं तो मैथ्स अगर हम अगर प्रैक्टिस में एक बार हम कर लिए हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हमको ताउम्र याद रहती हैं। जैसे हम हर एक दिन उसका यूज करते हैं, अब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो ये सब दैनिक जीवन में जो उपयोगी सब्जेक्ट, तो वो पैसे भला वो हार्ड कैसे हो सकता है, कठिन कैसे हो सकता है
1: जी,
2: वो तो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। हम एक सब्जी भी खरीदते हैं, कहीं दुकान में जाते हैं तो गणित विषय वहाँ पर उपयोग होता है, तो इसलिए गणित बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। हाँ, देखिए ये आपको कहने की यहाँ पर आवश्यकता है कि किसी भी चीज़ को जब हम हायर क्लासेज में जाते हैं तो वो चीज़ें जो है सो थोड़ी थोड़ी कठिन होती हैं, तो बाकी सभी सब्जेक्ट कठिन होते हैं, तो गणित को थोड़ी सी विशेष, गणित के बारे में थोड़ा विशेष नॉलेज रखना पड़ता है, उस पर प्रैक्टिस, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और वो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से बेस अगर कंसेप्ट नहीं लेकर के आते हैं,
1: सबसे बड़ी बात,
2: हाँ हाँ जी, अगर हम लोअर क्लासेज में हम बेस लेकर के नहीं आते हैं और अपर क्लासेज की मैथ्स को हम अगर देखते हैं तो थोड़ी सी कठिन हो जाती है, तालमेल गड़बड़ाता है, लेकिन आप थ्योरेटिकल पढ़ें और उसके बाद उसको दैनिक जीवन में उतारें और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का कोशिश करें, रूप देने का कोशिश करें, तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब जॉयफुल सब्जेक्ट इसमें है, लेकिन आपको पेशेंस बनाना है, आप इसको घबराना नहीं है, पेशेंस बनाना अगर आप सीख लिए तो मैथ्स आसान है और आप अगर घबरा गए, देखिए बच्चे अगर हम जन्म भी लेते हैं तो देखिए अगर हम चलना सीखते हैं तो बच्चों के लिए क्या होता है, चलना भी कठिन है, लेकिन अगर निरंतर अभ्यास करते करते हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो मैं बच्चों से बराबर कहता हूँ कि अभ्यास बहुत ही जरूरी है, आप निरंतर अभ्यास करिए और कंटिन्यूटी ये दोनों चीज अभ्यास के साथ कंटिन्यूटी के साथ आप अभ्यास करिए तो ये आपको जो है मैथ बहुत ही आसान लगेगा।
1: गृह जी अब वस्तु विषय पर आते हैं, आमतौर पर कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे रेलवे बैंकिंग में तो पूछे ही जाते हैं
2: जी,
1: जेपीएससी में पूछे ही जाते हैं, और कौन कौन से ऐसी?
2: अभी देखिए अब मैथ्स जो है सो ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि मैथ्स को नहीं छूता है।
1: कितने अंकों के प्रश्न रहते हैं?
2: आप देखिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी सी सेट हम यूपीएससी करें जेपीएससी करें तो उसमें सी सेट का एग्जाम देना है, तो सी सेट में देखिए कि एकदम एक पेपर ही रख दिया इसी के बारे में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में
1: जी,
2: तो आप उससे अछूता नहीं है। फिर आप जो भी एसएससी रेलवे बैंकिंग तो वहाँ तो रीजनिंग और मैथ्स के बिना तो काम ही नहीं चलना है
1: जी।
2: तो अब जहाँ तक मार्क्स की बात है तो हर एक एग्जाम्स के मार्क्स तय होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, तो किसी में 100 मार्क्स के होते हैं, कभी किसी में 120 मार्क्स के होते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये अलग अलग एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन मैथ रहना ही रहना,
1: प्रश्न पूछे
2: हाँ प्रश्न पूछना ही पूछना ही।
1: अच्छा अब ये सवाल है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्कूली की बात तो अलग है, स्कूली शिक्षा की बात अलग है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय की प्रतियोगिता विषय पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं
2: जी।
1: तो खासतौर से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में हमारे छात्र जो लगे हैं और आने वाले समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होनी है, रेलवे की भी होनी है, बैंकिंग के भी होने, बैंकिंग में तो जाहिर से बात है कि
2: हाँ
1: लगभग प्रश्न गणित पर ही आधारित होते हैं, आधारित होते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, मतलब कि गणित में कौन कौन से ऐसे चैप्टर को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए
2: जी,
1: और पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? बेसिक अथर आमतौर पर लोग गेस प्रश्न को हल करते हैं कि ये आने वाले हैं उसके करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्या है वो आप बताएं।
2: हाँ,
1: तो ये शुरुआत कहाँ से कर, पहले ये बताएं कि चैप्टर कौन कौन से खासतौर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक मोटा मोटी सिलेबस बता दें।
2: मोटा मोटी जो है सो देखिए अभी जो सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स में वे जो हैं सो आप मेंसुरेशंस है,
1: अच्छा
2: एलजेब्रा है,
1: ठीक है,
2: उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है,
1: अच्छा
2: ये सब जो है सो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस अभी बहुत ज़्यादा
1: पूछे जाते हैं।
2: हाँ अर्थमेटिक्स हैं, तो ये सब जो है सो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो जहाँ तक की बातें हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो इन सब टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनसे ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, तो उनके द्वारा जो है सो आप लीजिए और सेट बनाना शुरू करिए। पहले एक बार तो जैसे हम लोग जब अपने ज़माने की बात करते हैं तो अपने ज़माने में हम लोग के टाइम में एक शगीर अहमद और आर एस अग्रवाल की किताबें आती
1: हैं। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल
2: जी,
1: तो हम
2: हाँ आर एस अग्रवाल अभी भी बुक अवेलेबल है, तो इसमें जो है सो बहुत हम लोग तीन बार चार बार उस पूरे बुक को बनाए थे, तीन चार बार रिपीट करने के बाद उसमें बहुत उसके बाद मार्केट में सेट अवेलेबल होते थे। हम लोग के टाइम में एक प्रतियोगिता दर्पण और अभी भी आते हैं, प्रतियोगिता किरण आती थी
1: जी,
2: तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे सेट्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस डाला हुआ रहता था,
1: क्वेश्चन
2: बैंक का जी जी हाँ, तो क्वेश्चन बैंक से आप सॉल्व करिए तो एक आइडिया जाता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन टच कर रहा है और लेवल क्या है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस करिए, और हमेशा प्रैक्टिस में रहने से क्या है कि आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। मैं ये बच्चों को भी बराबर बताता हूँ कि देखिए अगर आप कोयले की खान से क्या निकलता, हीरा निकलता है ना, तो आप कॉपी को जितना काला करें, कहने का मतलब प्रैक्टिस जितना करें, तो ये कॉपी को आप जितना काला करिए वहां से जो ज्ञान रूपी प्रकाश होगा निकलेगा ना, वो आपको डायमंड से भी ज्यादा कीमती होगा आपके लिए,
1: तो
2: इसलिए हाँ ये प्रैक्टिस आपको निरंतर करना है, और हर एक आप एक पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक से आप आइडिया लीजिए कि क्या किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, और हमेशा पैटर्न तो चेंज होता है, अभी तो आप तो ऑनलाइन जमाना हो गया तो पैटर्न चेंज होता है, लेकिन फिर भी वो 10% या अप टू 20% क्वेश्चन को वो चेंज करता है, लेकिन बाकी पैटर्न जो है सो उसी टाइप का रहता है, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और मॉडल पेपर्स हो गए, आपके क्वेश्चन बैंक्स हो गए, अब बाकी इन सब चीज़ों को लेकर के आप निरंतर प्रैक्टिस करिए सेट को, सेट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको सप्ताह परीक्षाएं जो हैं सो उसमें क्या होगा कि टाइम आपका कम लगेगा और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको मिल जाएगा और इससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी।
1: सर ये जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके लेवल क्या होते हैं, जैसे कि बहुत से जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो बच्चों को पढ़ाते भी ट्यूशन भी पढ़ाते
2: जी, जी।
1: तो मेरे ख्याल से ट्यूशन भी एक बहुत बढ़िया है कि ये ट्यूशन पढ़ाने की जो कला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे जो बच्चों को पढ़ाते हैं 8th 9th 10th तो वो भी उनको ये फायदा पहुंचा सकता है।
2: बिल्कुल, हम तो शुरू में ही बोले
1: ये बहुत बेहतर।
2: हाँ हाँ एकदम शुरू आपके जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो बुक्स हैं तो मैथ्स जो है वो कहाँ से आया, चैप्टर तो सारे वहीं से हैं। आपको जो जूनियर क्लासेस से लेके प्लस टू तक के जितने सिलेबस हैं अगर ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए तो हमको लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा।
1: तो ये ट्यूशन पढ़ाना भी लाभदायक होता है,
2: ट्यूशन पढ़ाना भी लाभदायक है ना, उससे लेके
1: कंप्लीट भी हो जाता
2: है। हाँ, अपना भी पढ़ना है और दूसरे को भी पढ़ाना है तो आप ज्यादा, कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें अपने पढ़ने में समझ में नहीं आती है वो पढ़ाने के दौरान समझ में आ जाती है।
1: जी बिल्कुल
2: सही। हाँ, तो इसलिए जो भी अगर हम सजेस्ट भी करते हैं कि जो थोड़ा सा हम खुद जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं तो होम ट्यूशन या कुछ दो चार बच्चे अगर रहते हैं तो उनको लेकर के बैठिए, अपने अगर बनाने का मन नहीं कर रहा। हाँ, ये पार्ट टाइम होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम होना चाहिए,
1: पार्ट
2: एक घंटे दो घंटे का। उससे क्या है कि आप उसके बारे में जो बताने जाइएगा तो उसके पहले खुद भी पढ़िएगा और वहाँ पर नए नए कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको सहूलियत होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस अराइव हो रहे हैं और आप वहाँ जाइएगा उस किसी दूसरे के सामने किसी चीज को सॉल्व करिएगा तो आपका हेजिटेशन दूर होगा।
1: है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं गिरी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे हैं जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लाभ पहुँचेगा। अच्छा, आप थोड़े छोटे छोटे क्लू के रूप में ये बताइए कि जैसे जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं और उन्हें क्या आप क्लू के रूप में क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें। एक तो ट्यूशन की बात हो गई, ठीक है, दूसरे वो किस प्रकार से करें, कितना घंटा समय दें, एक आपने प्रैक्टिस की बात की, बेस की बात की भी आपने बात की कि बेसिक मजबूत, इन सब के अलावा और क्या क्या किस तरीके से तैयारी की जाए कि गणित का क्वेश्चन जो है वो छूट छोड़ना।
2: सबसे पहले है कि आप क्लास 7 से लेकर के प्लस 2 तक की जितनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं,
1: चलिए एक अच्छी बात
2: है, उस बुक्स को आप 3 से 4 बार तक बना लीजिए, आपके सारे डॉट्स और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना अगर आप कर लिए इसके बाद मार्केट में जितना सेट उपलब्ध सेट आता है, हाँ, प्रैक्टिस सेट, आप हर एक दिन एक सेट बनाइए, आप कभी भी
1: रहने में समय अवधि का
2: जी जी
1: समय भी रहता है,
2: समय भी रहता है तो आप कोशिश करिए। तो शुरू में तो टाइम मैनेज नहीं होता है, वो हम लोग भी किए हैं, तो शुरू में आपको 4 घंटे एक सेट बनाने में हो सकता है 4 घंटे भी 5 घंटे भी लगते हैं, लेकिन विद इन मंथ आप 1 महीना के अंदर अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखिए और डेली अगर सेट बनाइए तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे।
1: जी अच्छी बात।
2: हाँ, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं सिर्फ डेली एक सीट बनाइए, आप 3 से 4 महीने में आप अच्छे कॉम्पिटिटर जो हैं बनकर उभरेंगे और यकीन दिलाता हूं कि आपका मैथ्स में क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं एग्जाम में।
1: इन सभी चीज़ों के अलावा और भी कुछ बातें जो छूट गई हो जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
2: हाँ जी,
1: छात्रों को हाँ, तो वो आप शेयर कर सकते हैं।
2: एकदम हम छात्रों से यही कहेंगे कि आप सबसे पहले यही बातें कि जो आप नियमित अभ्यास, पहले एनसीईआरटी की बुक्स आप बनाइए, थ्योरी क्लियर करिए, किसी चीज़ को सोचिए, किसी चीज़ को सोचिए पहले कि ये थ्योरी आया क्यों आया। हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको 2-3 महीने टाइम देने पड़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक से आप उसको पूरा कंसेप्ट ले लीजिए और इसके बाद जो है आप सेट्स को कंटिन्यू बनाइए, आपको बहुत लाभ होगा। तो क्या करते हैं आजकल कि यूट्यूब में देखने लगते हैं, जैसे क्वेश्चंस जो है कोई भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो है सो यूट्यूब में क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं और एक सजेशन भी देता हूं कि आप कोई भी चीज़ें जो है सो हाँ जहां डॉट्स है उसको देखिए, लेकिन उसको देखने के बाद फिर से अपने से जरूर बनाइए। अभी हाल ही में मेरे यहाँ जब एग्जाम चल रहा था तो हुआ क्या कि कुछ लड़के जो है सो एकदम कैलकुलेशन में तीन स्टेप चार स्टेप गए फंस गए, तीन स्टेप गए चार स्टेप गए फंस, मैक्सिमम

0: 8-10 क्वेश्चन से ऐसा हुआ। तो मैंने उन लड़कों से कंसल्ट करने का कोशिश करी, तो किए तो क्यों ऐसा हुआ, बोल सर ये सब क्वेश्चन हमने यूट्यूब में देखा लेकिन अपने से सॉल्व नहीं किया। तो बस उनको देखने के टाइम में लगता कि अरे ऐसे ऐसे होगा, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। जब खुद को आप करने लगते हैं तो बस 2-3 स्टेप में फंस जाते हैं। तो इसलिए
1: दूसरे से ड्राइविंग सीखना, हाँ जी, वो चला रहा है और आप देख रहे हैं और खुद ड्राइविंग करना,
0: खुद ड्राइव,
1: ये दोनों बातों में अंतर
0: अंतर
1: सवाल है कि खुद
0: ये बहुत अच्छी,
1: खुद ड्राइविंग सीट पे आपको आना होगा,
0: आना तभी। तो ये आजकल ये मैं हाँ रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट, जितने भी आप, चाहे वो बोर्ड एग्जाम अभी आने वाला है, आप बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो, आप मोबाइल को अवॉइड करिए। और उसमें जहाँ डॉट्स है बहुत अच्छी चीज है, ये तो गागर में सागर भरा हुआ है, लेकिन आपको इसके अनुसार तैरना आना पड़ेगा
1: जी,
0: है ना। तो आप अगर डाइव लगाएंगे तो आपको तैरना जानिए कि हमको कितना पानी में जाना है, कितना पानी में नहीं जाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को अपनाना है। तो ये आप मोबाइल यूज करिए, लेकिन डॉट्स क्लियर के लिए कभी कभार, ये नहीं कि आप यूट्यूब में देख लिए कि ये मैथ्स ऐसे सॉल्व हुआ, ये जीके ऐसे सॉल्व हुआ। तो ये देख करके आपको चलना, जैसे आप जब तक जमीन पर चलिएगा नहीं तब तक कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, ये आपको पता नहीं चलेगा।
1: ये थे गिरीश कुमार जी, गणित विषय के शिक्षक जिला स्कूल प्लस टू विद्यालय में, और इनसे हमने आज जाना कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय क्या स्थान रखता है और आप इसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं। एक विस्तृत चर्चा हमने की, हमारे श्रोताओं के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर।
2: आप सभी सुन रहे थे भेंटवार्ता, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय की उपयोगिता। भेंटवार्ताकार थे गिरीश कुमार और इनसे बातचीत किया अशोक कुमार ने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: और इसके साथ ही अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को कार्यक्रम युववाणी से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सभी सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं का स्वागत। एसपी बाला सुब्रमण्यम और सपना मुखर्जी की आवाजों से कर रहे हैं। फिल्म का नाम है त्रिनेत्र। समीर ने बोल को लिखा, आनंद मिलिंद ने संगीत दिया।

क्रांति फिल्म संगीत में। अब आगे इस गीत को सुनिए, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद ने गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत है। मनहर उदास और मोहम्मद अजीज के स्वर हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में।

आप सभी सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आप सभी। 7:10 पर जिले में आजकल होगा। इन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डूरंड कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरू में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष डूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के अलावा इस साल डूरंड कप की मेजबानी रांची भी करेगा। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
6: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
5: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से रथ यात्रा मार्ग तथा मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने रथ यात्रा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने, पर्याप्त चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने कहा कि रथ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए रथ यात्रा महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा 16 जुलाई से

0: होगी। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रसदा गांव में विस्थापन समस्या को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कहा कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।
1: विस्थापन की समस्या जब झारखंड राज्य अलग बना था, जो विरासत पे ये समस्या झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ था, और विकास के नाम पर अगर उनकी जमीन कोई ऐसे कंपनी लेता हो तो उससे विस्थापित जो हुए हैं उनकी रक्षा भी करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अनुप कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिव पूजन पाठक ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है तथा राज्य सूचना आयोग की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं की ओर से संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल से किसानों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 180% अधिक मूल्य मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। राज्यपाल से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया गया।
2: तो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है। अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के बहन में जाकर घुसने का काम और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस बहन ने भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया।
0: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है। जो किसान मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें प्रति एकड़ 3,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रीमती तिर्की आज हजारीबाग में पिछले 29 जून से आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने राज्य के कम वर्षा क्षेत्र के लिए रिलीफ फंड जारी करने की मांग केंद्र सरकार से की।

0: वर्ष एलनीनो का असर पड़ने वाला है। सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में विचरा कर मेरे कोई गंदी करे ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए। आज मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किया। आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रुपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी।
1: बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। मौसम। पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से किसानों में जहां हर्ष है वहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने रांची मौसम केंद्र ने 10 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डूरंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डूरंट कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यह बंद शहर में बढ़ते अपराध, ब्राउन सुगर के बढ़ते कारोबार और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के विरोध में बुलाया गया था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, अपराधी बेखौफ होकर हत्या, रंगदारी और नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।
2: इस शहर में सट्टा चल रहा, मटका चल रहा, जुआ चल रहा है, चापर चल रहा है और हत्या चल रही है। एक हिमांशु की हत्या होती है, कई हिमांशु की हत्या हो जाएगी। चैन छिनता ही तो आम हो गया और दोनों हाथ भी काट दे रहे हो। बिरसानगर की घटना हुई है, हम सभी लोग जानते हैं कि बिना पुलिस के साठ गांठ में इतना बड़ा क्राइम को कोई मर्द नहीं है इस शहर में कि उसे अमली जामा पहना दे। एक खाकी वर्दी से पिछले दिनों के पीढ़ियां डरा करती थी, आज वही खाकी वर्दी के पीसीआर वैन से निकाल कर उसे चाकू मारा जाता है और पीसीआर वैन में बैठे हुए हमारे अधिकारी पदाधिकारी हाथ में राइफल लेकर के शोभा बढ़ा रहे थे। अब सोची लानत है, एक माँ की कोख सुना हो गया। हम आने वाले पीढ़ियों में और हिमांशु की मौत ना हो जाए, ब्राउन शुगर का कारोबार बढ़ ना जाए, जब तक आप रावण के नाभि का इलाज नहीं करोगे, सर काटते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला इस शहर में नहीं है।
1: जमशेदपुर प्रधान डाकघर में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत स्पीड पोस्ट सेल बुकिंग कियोस्क की शुरुआत की गई। इस नई सुविधा से अब लोगों को स्पीड पोस्ट बुक कराने के लिए लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक स्वयं पार्सल का वजन कर, पता दर्ज कर और UPI QR कोड या कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर कुछ ही मिनटों में स्पीड पोस्ट बुक कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि यह सुविधा डाक सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी।
3: सेल बुकिंग कियोस्क मशीन हम लोग नया जमशेदपुर प्रधान डाकघर में इंस्टॉल किए हैं। इस मशीन का खास बात यह है कि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक कस्टमर इसमें आ करके और स्वयं के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल इसमें आराम से बुक हो जाएगा और जो ऑनलाइन पेमेंट है QR कोड के माध्यम से, इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और बुकिंग करने में जो है काफी कम समय लगता है, 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। जमशेदपुर प्रधान डाकघर में बुकिंग का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है, एक अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं।
1: जमशेदपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्रा, मार्गों पर साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर समितियां रथ को अंतिम रूप देने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा में जुटी है। प्रशासन की ओर से भी रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।
4: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सभी हमें सुन रहे हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का। तो ये दैनिक कार्यक्रम आप सबके लिए लीजिए हाजिर करते हैं। सावन कुमार ने पहले गीत को लिखा है, महेश किशोर ने संगीत से संवारा है। कविता कृष्णमूर्ति गा रही हैं सनम बेवफा फिल्म के इस गीत को।

0: के तुम जाओगी।
1: फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम झनकार सुन रहे हैं आप सभी। सनम बेवफा के इस गीत के बाद नसीब फिल्म का गीत सुनिए, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया और साथ दिया अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

तो ये थी आज की झनकार की महफिल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

FM 102.1 MHz पर आपने ट्यून किया आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र ऑल टाइम हिट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। किशोर कुमार की आवाज से कर रही हैं। मिली फिल्म का गीत है, योगेश ने इसे लिखा, संगीतकार हैं SD बर्मन।

कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स में आगे नमक हराम इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन।

आवाजों में समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: सारेगामा कारवां।
1: कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स के आखिर में केके का गाया रोग फिल्म का गीत नीलेश मिश्रा ने लिखा, इसे संगीत दिया एम एम क्रीम ने।

केके के गाए रोग फिल्म के इस गीत के साथ ही ऑल टाइम हिट्स का ये सफर अब यहीं तक। बोल रहे हैं हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। रात्रि के 8 बज गए और 8 बजते ही आप सबको इंतजार होता है अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत का। तो लीजिए, कार्यक्रम प्रस्तुत है आपका ही आपकी चाहत। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं माणिक चक्रवर्ती, सुनाऊंगा आपके फरमाइशी गाने। पोस्टकार्ड बहुत सारे आए हैं, जिनमें से आज सम्मिलित हुए पोस्टकार्डों में से सबसे पहले मेरे हाथ में है छत्तीसगढ़ भाटपारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से ये खत, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान और मुस्तबा खान के साथ राहू भाई और शाहिद भाई का। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने हमें खत लिखा है और ये खत पहुंचा है सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख और बाबू आरिज वसीम के साथ, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू और हमजा बाबू के साथ, मुजम्मिल बाबू और हुमेरा नाज का। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप सभी लिखते हैं। कोकिलवारा ओराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख और नुजहत जहां नाज ने हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का ये पहला गीत है और इसे पसंद कर रहे हैं पंचमंदिर हजारीबाग से इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू ने। तो आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का यह पहला गीत सुनवा रहा हूं जमाना दीवाना फिल्म से। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

जमाना दीवाना, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। अब अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी और भरत ठाकुर ने चेपाकला बड़का गांव से यह खत लिखा है। इनके साथ हैं अनुराधा रुक्मिणी, प्रियंका दीपिका, जितेश आदर्श, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर और प्रभात कुमार ठाकुर। यह अगला खत इसी गीत के लिए हमारे पास पहुंचा मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहणकर राही, सरिता गवाहणकर और प्रिंस एकांश गवाहणकर का। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाहणकर, श्वेता सुमित गवाहणकर और कुमारी ध्वनि गवाहणकर परी ने हमें खत लिखा। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाहणकर और प्रणीता गवाहणकर सुनना चाहती हैं कार्यक्रम का यह अगला फरमाइशी गीत। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप सभी हैं बेबी आरजू जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया और डॉ रमेश कुमार जाजोरिया। भागवत वर्मा दंतरेगी छत्तीसगढ़ से खत लिखते हैं। मोहम्मद गुलाम अली, मोहम्मद सद्दाम अली, पप्पू छोटू और रोबोट ने हमें रसूलीगंज हजारीबाग से खत लिखा। अब जानना ये कि इन सब ने किस गीत को पसंद किया। दिल कहीं होश कहीं, इस फिल्म का ये गीत आप सभी सुनना चाहती हैं, जिसे निदा फाजली ने लिखा, आदेश श्रीवास्तव ने संगीत से संवारा, लता मंगेशकर गा रही हैं इस गीत को। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम भी गुनगुना लें आप सबका ये फरमाइशी गाना।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून किया है आपने, जो है आपका ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, और आपकी चाहत सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से अपने दोस्त माणिक के साथ। और बलियंद हजारीबाग से ये खत अब हमारे हाथ में। सुनने वाले सभी श्रोताओं का नाम बोल रहा हूं, रीना कुमारी, उमेश रजक, खुशी कुमारी, संगम कुमारी, हर्ष राज, काजल कुमारी, रंजीत कुमार, सूरज रजक, भोला रजक, बबीता देवी सहित परिवार के सभी सदस्य। और बलियंद हजारीबाग के बाद अब हमारे हाथ में जो खत है वो है ग्राम पोचरा रविदास मोहल्ला से। आप सभी हैं महेश रविदास, सरिता देवी, पिंटू वर्षा फुलवासी देवी और रमेश, सबिता और परिवार के समस्त लोग। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राजेश के साथ राशि राजेश, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने अमरपुर पिंडरा हजारीबाग से हमें खत लिखा। और ये पतरातू हजारीबाग से बेसिल खलको, मधु रितु, रचना, मितु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन एवं समस्त परिवार के लोगों ने हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ये सभी। और टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा ने हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से यह खत लिखा। कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा के साथ उनके साहिल ने हमें खत लिखा। तो आप सबकी पसंद पर आइए निशान फिल्म का गीत सुना जाए किशोर कुमार की आवाज में। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से संवारा है।

चाहते हैं आप भी कि दिल की गहराइयों को आप सभी के सामने खोलकर रख दें गीतों के साथ, तो कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग पोस्ट बॉक्स नंबर 1 पिन संख्या 825301 पर पोस्ट कार्ड पर अपना नाम, अपने चाहने वाले दोस्त यार और परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए और फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख दीजिए। आपके फरमाइशी गाने हम पूरे भारतवर्ष को सुनाएंगे, साथ गाएंगे और गुनगुनाएंगे।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। मनप्रीत अख्तर और अलका याग्निक के साथ उदित नारायण गा रहे हैं इस गीत को। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार सुनना चाहते हैं इस गीत को। साथ हैं उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका और शम्मी के साथ अपराजिता, अपूर्व, टुक्कू और समस्त पांडे परिवार। ये डम्भाडी हरली से हमें खत लिखते हैं। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी और करूला मुरादाबाद से मिराज अंसारी और वसीम अंसारी सुनना चाहते हैं कार्यक्रम के इस गीत को, अगले गीत को। सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और परिवार के सभी लोग खरसावां झारखंड से ये गीत सुनना चाहते हैं।

निकहत परवीन, नसीम अहमद, कोहिनूर बानो, खलील अहमद, आरजू बानो, नूर इस्लाम चांद और हसीना खातून के साथ शमीम अहमद ने रेलवे स्टेशन हजारीबाग से इस गीत को सुनना चाहा।

जिन्होंने अभी अभी या कुछ ही देर पहले अपना आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र ट्यून किया है, उन्हें बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीतों का तो ये सिलसिला चल रहा है आपकी चाहत। और यदि आप भी पोस्ट कार्ड पर अपने नाम और अपने चाहने वाले दोस्त यार का नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम, अपने बच्चों का नाम लिखकर, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिखकर भेजना चाहते हैं, तो कार्यक्रम का छोटा सा पता आपको हम बताए देते हैं। कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन संख्या 825301 और पोस्ट बॉक्स नंबर 1। इस छोटे से पते पर आप हमें खत लिखिए, पोस्ट कार्ड पर ही लिखिए और सीधे वो हम तक पहुंचेगा और उसके बाद आपके फरमाइशी गीत पूरा भारतवर्ष सुनेगा। आपके साथ साथ हम भी गाएंगे और गुनगुनाएंगे। मेन रोड बड़का गांव से कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा के साथ ढेर सारे उनके साथी गण ने। सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी लिखते हैं मलोट कैंप पंजाब से, और आप सबके साथ हैं विशाल मिगलानी, शाइना अनमोल, गुरुचरण ग्रोवर, जगतार गिल, वीर सिंह और रमेश मिगलानी। ये खत मेरे हाथ में अगले गीत के लिए, इसी गीत के लिए रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया उर्वशी, अमन बेबी, सोना बाबू, आर के वर्मा का पहुंचा सीसीएल बरकाकाना से। शिवाजी चौक कटनी से आप सभी हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, रविकांत नामदेव, पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना, मोना हनी, यश सौम्या और उनके मम्मी पापा। ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम ने खत लिखा हमें इसी गीत को सुनने के लिए। तो ये गीत है कसूर फिल्म का, कुमार शानू गा रहे हैं इस गीत को। लीजिए सुनिए अपने फरमाइशी ये गीत, और समीर हैं गीतकार और नदीम श्रवण हैं संगीतकार।

अगर आप रेडियो से दूर हैं तो मोबाइल आपके हाथ में है और मोबाइल आपको सीधे न्यूज ऑन एयर ऐप पर ले जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और भारत के किसी भी कोने में

और कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गाना अब सुनने का समय हुआ। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने हमें खत लिखा है इस गीत के लिए। अगला गीत सुनना चाहते हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव के साथ।

उनके आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव और अनिल कुमार, ये अमरपुर पेंड्रा और शिवाजी चौक राजिम से हमें खत लिखते हैं। और ये शालर पहलगाम कश्मीर से खत पहुंचा पीरजादा मेहरजुद्दीन और कैशरदीन और नजमदीन का। भंडार सिवनी कोंडागांव छत्तीसगढ़ से ये खत इसी गीत के लिए सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी का पहुंचा। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर का ये खत आया है। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये खत हरदेव मीका, बलविंदर मीका और जैतेग बीरक के साथ मीका बीरक का पहुंचा। ये खत पतली गली वाराणसी से है। आप सभी हैं जावेद मुश्ताक वाला और नासिक मुश्ताक वाला के साथ साजिद शाहिद और मुश्ताक सुलेमानी का। लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने खत लिखा है। और प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम साहू, भूपेंद्र साहू ने ग्राम धुरवा बांधा भाटपारा से हमें खत लिखा है। भाटपारा से सीधे स्टेशन रोड झुमरी तिलैया पहुंचते हैं, जहां से किशोर कुमार मगधी और सुनीता देवी के साथ बंटी कुमार सुनना चाहते हैं इस गीत को। झुमरी तिलैया से ही विजय कुमार शर्मा और उनके साथ ही सुनना चाहते हैं इस गीत को। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने महादेव घाट अमलेश्वर से खत लिखा। चंदा, चांदनी, आकाश कुमार, इनके मम्मी पापा के साथ कन्हैया लाल और रीता देवी ने हमें खत लिखा है। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुंडेला से। कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सबके लिए आप ही की पसंद का लम्हे फिल्म का है। हरिहरन ने गाया इस गीत को। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार शिवहरी।

और श्रोताओं, अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को अब कार्यक्रम आपकी चाहत से यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। बस थोड़ी देर में समाचार संध्या का आज का अंक न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।

0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिमी

0: चकी भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. the headline.

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाए।

0: मोरे अंगना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले।

बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935, अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल विश्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को

पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर पूरे भारतवर्ष में एक साथ अब सुना जाएगा रजनीगंधा। स्वागत आप सबका करता हूं मैं माणिक चक्रवर्ती। आज की रात, आज है 7 जुलाई, विशेष हर किसी के लिए 7 जुलाई। आज की रात सबसे पहले उमराव जान इस फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, आशा भोसले की आवाज़।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें साथ हैं, संग हैं अलका याग्निक, फिल्म है सलामी। न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुना जा रहा है कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 100.2.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

रजनीगंधा के माध्यम से आज की रात हम ये चाहेंगे कि कोई महबूब किसी से तो जुदा ही ना हो, और अगर जुदा होने की स्थिति हो तो फिर हो एक नई जद्दोजहद जिसे प्यार की एक नई मिसाल कायम करने का हम सबको मन करे और वही दुनिया भी कहे। साथ में किशोर कुमार की फिल्म शर्मिली के इस गीत की ही तरह।

रजनीगंधा सुना जा रहा है आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से आज की रात। आज है सात की रात। याद किसी की जब आती है तो दिल से तराने कुछ ऐसे निकलते हैं कि अगर कोई और किसी को याद कर रहा हो या किसी की याद में डूबा हुआ हो, दुखी हो, परेशान हो, तो उसकी याद इसकी याद से मिलकर इस गीत का निर्माण करती है। ऐसा लगता है जैसे। सुनिए बप्पी लहरी की आवाज में डिस्को डांसर फिल्म का ये नगमा और महसूस कीजिए।

चल मेरे भाई, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में इस फिल्म के इस गीत को सुन रहे थे हम, रजनीगंधा की खुशबू। अब यहीं तक, अगली खुशबू बिखेरेंगे हम एक विशेष कार्यक्रम के साथ जो है आज के फनकार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज महान पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना अजीज हैं हमारे फनकार। श्रोताओं, इन्होंने हमें एक भावपूर्ण तोहफा दिया है जो सदा के लिए हम सब के लिए अपनी अतरंगी सुरीली आवाज को छोड़ गए हैं, मोहम्मद अजीज साहब।

उर्फ मुन्ना अजी साहब हैं। मोहम्मद अजी साहब की कुछ ऐसे चुनिंदे नगमे लेकर आया हूँ कि आज की रात आप मोहम्मद अजीज के साथ ही रहेंगे।

आज के फनकार के आखिर में हमारे अतरंगी सुरीली आवाज के मालिक आज के फनकार मोहम्मद अजीज के स्वर में ये गीत।

ये जिंदगी तेरे कदमों में डाले जाएंगे, इस अतरंगी और सुरीली आवाज के मालिक मोहम्मद अजीज के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज के फनकार अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने हुई हैं, कुछ ही सेकंड्स में 11 बजेंगे और 11 बजते ही हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सभी सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।